0: जी
1: जानवरों को लगने वाली बीमारियों ना बचा सकी। तो इसलिए दिन जानवरों में बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, जानवरों की जिम्मेवार देखभाल, सुरक्षित अते साफ सुथरे भोजन की वरतों अते वातावरण की सफाई की महत्ता उजागर करता है ताकि आप जेनेटिक बीमारियां जिहड़ियां उन्हां दे खतरे नूं घटा सकीए। तो जिवें तुसीं पहले भी दस्सिया
0: जी
1: कि 70% जिहड़ियां नवीं बीमारियां उभर रहियां ने उन्हां दा मूल कारण जिहड़ा वो जानवर ही हन, मतलब कि पशुआं तों या जानवरों तों 75% जिहड़ियां नवीं बीमारियां वो मनुखां तक पहुंच रहियां हन। तो
0: जी
1: जेनेटिक बीमारियां एक्चुअली वो इनफेक्शियस या संक्रामक बीमारियां हन जिहड़ियां कि कुदरती तौर ते जानवरों तो मनुखा ते मनुखा तो जानवरों में फैल सकदियां हन। ये
0: जी
1: बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस कारण भी हो सकदियां हन। ते कई तरह दे पालतू जानवर जिवें कि गावां, मझां, घोड़े, भेड़ां, बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां अते कई तरह के जंगली जानवर जिवें कि बैट्स आपां सुणदे हां,
0: जी जी
1: चूहे
0: सर
1: या डियर वगैरह, मंकीज, ये जिहड़े ये बीमारियां मनुख तक फैला सकते हैं। सो ये बीमारियां जिहड़ियां फैलन दा मेन जिहड़ा मुद्दा हुंदा है वो बीमारियां ज्यादातर फैलदियां जदों आपां किसी बीमार जानवर दे सिद्धे संपर्क विच आउंदे हां जां उन्हां तों प्राप्त भोजन जिहड़ा कि दूषित होवे जां कंटैमिनेटेड होवे उहदा आपां सेवन करदे हां, जां कई वारी मच्छरां, चिचड़ां अते होर कई तरह के वैक्टर होंगे ने जिहड़े कि पशुओं तो मनुखा तक बीमारी फैला सकते हैं
0: जी
1: या
0: बिल्कुल
1: कई वारी दूषित वातावरण राही मनुखा तक फैल सकती हैं। तो इसलिए जानवरों की सही देखभाल, निजी सफाई, सुरक्षित भोजन की वरतों और वातावरण की सफाई जिहड़ी है वो जेनेटिक बीमारियों तो बचा लिए महत्वपूर्ण है।
0: जी जसबीर सर, जिदा कि तुसीं कहे कि जेनेटिक बीमारियां जड़ियां है वो जड़ी इन्फेक्शन दे नाल जड़ी हैगी है या फिर कोई इहो जिहा बैक्टीरिया हो गया है जिदा दस्सिया तुसीं उस नाल फैल सकदियां। हुण जड़ियां बीमारियां ने इस दे विच कीहड़ियां कीहड़ियां बीमारियां आ सकदियां ने ते इस दा खतरा होर किन्ना वध सकदा है साडे लई?
1: जिवें मैं पहले भी दस्सिया भी 200 तो वध इहो जिहियां बीमारियां हन जिहड़ियां कि एवं फैल सकदियां हन। अते जे आपां भारत देश की गल करिए या
0: जी
1: पंजाब की तां इत्थे प्रमुख जिहड़ियां जेनेटिक बीमारियां पाईयां जांदियां हन उन्हां विच रेबीज है जिहड़ी कि हलकावले कुत्तियां तों मनुखां तक पहुंचदी है,
0: जी
1: ब्रुसीलोसिस है जिहड़ी कि गावां, मझां, भेड़ां, बकरियां तों मनुखां तक पहुंच सकदी है, लेप्टोस्पाइरोसिस है जिहड़ी कि जानवरां या चूहियां तो मनुख नूं हो सकदी है, बर्ड फ्लू है जिवें आपां कई वारी सुणदे हां भी पोल्ट्री तो ये बीमारी जिहड़ी है मनुखां तक
0: जी
1: पहुंच सकदी है, सूरां तो पहुंचण वालियां मुख्य बीमारियां जापानी इंसेफलाइटिस है, एंथ्रेक्स है, चमगादड़ां तो होण वालियां बीमारियां निपा वायरस है, बोला वायरस है अते क्रेमियन कोंगो हमरेजिक फीवर जिहड़ियां ये आम तौर ते बीमारियां जिहड़ियां ये अपने भारत विच पाईयां जांदियां हन।
0: जी
1: अते जे असीं गल करिए तां अज वी भारत विच रेबीज जिहड़ी है उहदे कारण जिहड़ियां जेनेटिक बीमारियां कारण होण वालियां मौतां है मनुखी मौतां उहनां विच रेबीज जिहड़ा उह नंबर वन है।
0: जी
1: ते दूजे पासे जे असीं अज कल दे मौसम बारे देखिए जिवें बरसातां दा मौसम चलन दिया है ते लेप्टोस्पाइरोसिस जिहड़ी है इहदा थोड़ा जिहड़ा खतरा वध जांदा है क्योंकि ये बीमारी जिहड़ी है बीमार पशु या चूहियां दे पेशाब राही वातावरण विच आंदी है ते मनुखां दा जे दूषित पानी या गिल्ली मिट्टी दे नाल संपर्क होवे ते जे
0: जी
1: लेप्टोस्पायरा करने वाले बैक्टीरिया उत्थे होण तां उहदा रिस्क जिहड़ा वो वध जांदा है। तो कई कारण ने बीमारियां दे मनुखां तक पहुंचण लई, कई जिवें ऑक्यूपेशनल रिस्क भी हुंदे ने भी जिहड़े डेयरी फार्मर या किसान या वैटनरी डॉक्टर पशुआं दे नाल देखभाल करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो उन्होंने जो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसलिए ये बीमारियां की जी देखभाल या इन्होंने पछाणना या किवें फैलदियां हैं उन्होंने जानकारी जी अजकल के समय में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी बिल्कुल जसबीर सर, मैं थोड़े तो यही क्वेश्चन अगला पूछने वाली सी कि जिहड़े पालतू पशु हो गए, घरेलू पंछी हो गए हैं, उन्हां दी देखभाल करते समय जे कोई लक्षण, मतलब कि इहो जिहे लक्षण सानूं वेखण नूं मिलदे ने कि ये बीमारियां जिहड़ा है या फिर वो इस बीमारी तो जूझ रहे हैं, सानूं किवें पता लगेगा इस बारे?
1: जोनोटिक बीमारियां जिहड़ियां हैगियां इन्हां दे लक्षण जिहड़े ने वो आम तौर ते जिहड़े आपां कह दिंदे ने भी कई वारी आपां इग्नोर कर दिंदे हां क्योंकि आम

0: बात होगी ना छोड़ी है कोई कसर टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू मैं ही

0: हाँ जी
1: हाँ जी,
0: वाह, गुड
1: गुड मॉर्निंग मैडम
0: मॉर्निंग
1: राहल जी।
0: जी।
1: सत श्री अकाल, मैं बलविंदर सराँ, पिंड मोरजन सिखा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान तो बोल रहे हैं। हाँ
0: जी
1: जी, एक छोटी जी रचना है जी,
0: जी
1: मतलब प्यो ते धी दे बारे। हाँ जी मौजूद है जी। जे मेरी धी नूं कोई मुंडा पसंद आया, हाँ जी,
0: जी
1: जे मेरी धी नूं कोई मुंडा पसंद आया तां मैं उहनूं बोलूंगा मेरे नाल गल करी।
0: जी
1: जे सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हुई तां बस तू अपने प्यो दे मोढ़े दे वल खड़ी। मेरे वालों तेनू हर एक आजादी मिलेगी, मेरी इज्जत भी सांभी किते कख ना करी। अपने प्यो दा प्यार भी याद रखी तू, ओदे पिछे लग के किते मैनू वख ना करी। तेरे करके ही अखां विच खुशी दिसदी है, इन्हां अखां विच कदे तू नीर ना भरी। बड़े प्यार नाल मैं ते तेरी माँ ने तेरा नाम कायनात रख्या, पर तू हीर ना बनी जी। सत श्री अकाल जी। ओके जी।
0: बहुत वधिया सत्रां जिदा बलविंदर सराज जी ने लिखी है कि एक धी जिहड़ी है उसदे उपर किन्नियां क जिम्मेदारियां हुंदियां है ना, अपनी हुंदी है, घर दी जिम्मेदारी हुंदी है, तो एक लाज दी हुंदी है कि अपना जिहड़ी है इस तरह ख्याल रखे कि उसदे नाल नाल ही पूरे परिवार दी इज्जत पूरी हुंदी है। जे घर दे विच किसे नूं इहो जिहा हुंदा है कि आपस दे विच गल्लां आपां सांझी करदे हां इक दूजे तों, है ना, ते फिर कुड़ियां कई वार झिझकदियां कि नहीं मैं किसे नूं नहीं दसणा मैनूं कोई पसंद है या किसे नूं मैं पसंद करदी हां, मैं घर दे विच दसां या ना दसां की सोचेगा कोई। ए तुसीं अपनी जिहड़ियां दिल दी गल्लां अपनी फैमिली दे नाल जरूर सांझी करिया करो, वो जरूर समझणगे इस गल नूं, क्योंकि माहौल जिहड़ा है पहला चेंज हो रहा। पहलां हुंदे सीगे कि सिर्फ विआह वेले जिहड़ियां ना सिर्फ सानूं सिर्फ फोटो ही वेखण नूं मिलदियां हुंदियां सीगियां, साडे जिहड़े पेरेंट्स उह ते इही दसदे कि हाए ओए रब्बा तेरे फादर साहब नूं जदों मैं विआही सीगी उदों पहली वार वेख्या सीगा, है कि नहीं। लेकिन हुण समां बदल रहा, हुण जिहड़ियां फैमिलीज चेंज हो रही हैं, इस करके जिहड़ियां है आपस दे विच गल्लां जरूर सांझियां करा करो। लो जी, नाल ही सानूं अगला ऑडियो मैसेज आ गया, सुनते ने कौन दोस्त ने ते साडे दोस्त की कहना चाहुंदे ने सानूं।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡ ਬੱਕੂ ਚੱਕ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ
0: ਹਾਈ
2: ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਰਪਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਚੱਕ ਲਿਓ।
0: ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਯੇ ਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया जी गीत बहार। वेल दोस्तों प्रोग्राम गीत बहार दे विच निवेदिता दा रहेगा तुहाडे नाल साथ ते प्रोग्राम दे विच खूब सारे फिल्मी गाने ते गल्लां बातां दा सिलसिला भी जारी रहेगा। सो तुसे जाना किते भी नहीं है, बने रहना इसी तरह ही मेरे नाल, क्योंकि बहुत सारिया गल्लां अज मैं तुहाडे नाल करनी है ते प्रोग्राम गीत बहार दे विच सोहणे सोहणे गीत भी तुहाडे लई प्ले करने है। सो इसी तरह ही मेरे नाल एफएम रेनबो दे नाल बने रहना, किते भी नहीं जाना। ते रेडियो ते तुहाडे लई प्ले कर रही हूं बहुत ही प्यारा जिहा गीत मोहित चौहान दी आवाज दे विच। एंजॉय करते हैं ए गीत।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम गीत बहार निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों, आज अपने आप नू कॉम्प्लीमेंट दिता है। नहीं तुसी सोच रहे हो कि एकदम ये गल्ला कर रही है, नहीं बहुत जरूरी है। तुहानू पता है सैल्फ लव सैल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, सब तो जरूरी है। जेकर असी अपने आप नू खुश रखांगे ना तो फिर असी सब नू खुश रख सकांगे। सो एक वर्ड अपने आप दे लई कॉम्प्लीमेंट अपने आप नू जरूर देना चाहिए। रोज़ हर रोज़ शीशे दे सामने खड़े होके कोई हर्ज नहीं जे असी अपने आप नू कह दईए कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इंटैलीजेंट, यू आर वेरी कोऑपरेटिव। एक वर्ड ही तो है जदों असी अपने आप नू कहने आ ना तो उहदे नाल सानू बहुत खुशी मिलती है। यस, इहनू अजमा के देखना। एक अपने आप नू कॉम्प्लीमेंट देना, अपने आप नाल गल्लां करनियां ते अपने आप नाल मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिहड़ी स्माइल थैरेपी है ना, जदों असीं अपने आप नाल हसदे हां अपने आप लई मुस्कुराने हां ते फिर उहदे बहुत फायदे है। साडी मैंटल हैल्थ भी ते फिजिकल हैल्थ भी बहुत ही वधिया रहिंदी है, फिट एंड फाइन रहिंदे आ जेकर असीं अपने आप नू प्यार करना, अपने आप नाल गल्लां करनियां ते अपने आप नू प्रेफरेंस देनी प्रायोरिटी देनी शुरू कर देंदे आ ते फिर किन्ना औखा काम है। यस, बहुत आसान है, पर आजमा के देखना। ऐदा लगेगा कि यह दुनिया ही बदल गई है, क्योंकि जदों असीं अपने आप नूं पसंद करन लगते हैं ना तो असीं अपने आप दे खुद ही वैलविशर बन जाने हैं।

जी, तेरे संग इश्क हुआ, इश्क अपने आप नल कीता जाए तो बहुत ही वधिया होंदा है, क्योंकि उहदा कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी उहदा सानू नेगेटिव रिस्पांस नहीं आना। सो अपने आप लई जीना बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों, अगे वधदे हां ते गल करदे हां प्री प्लैनिंग दी। यस, प्री प्लैनिंग बहुत ही जरूरी है। चाहे असीं छोटा जिहा कम भी करना होवे ते प्री प्लैनिंग तो बिना नहीं चल सकते। जेकर असी प्रॉपर प्लैनिंग करके चलांगे तो काम के रिजल्ट चंगे आते हैं, टाइमली खत्म हो जाता है, और जिहड़ी सानू अलग तो हैप्पीनैस मिलती है उहदी तो कोई रीस ही नहीं है ना। कई बार की होंगे कि असी कहने यार ये तो छोटा जिहा काम है, फिर क्यों हो गया, कर लाँगे, ये तो मेरा चुटकियां का काम है। पर नहीं, प्लैनिंग तो बिना जेकर कई बार काम किया जाए तो छोटा जिहा काम भी इन्ना क लटक जाता है, इन्ना क लटक जाता है ना, तो असं कहने ओहो क्यों नहीं मैं पहला ध्यान दिता। सपोज़ कि असी कितने जाना ही है, सो असी ये कि चलो कोई ना लंघते लंघते 5 मिनट का काम है, मैं कर लाँगा, है ना। काम जरूरी है पर लगने

5 घंटे से, पर जाके पता लगता है जी वो जगह, वो शॉप, वो ऑफिस तो आज बंद है। तो फिर ऐसे सोचते हो, होए यार मैं क्यों नहीं कॉल की थी पहला। प्री प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार छोटा जिहा काम भी ना बहुत ही लंबा लटक जाता है जदों असी उन्हूं प्लान करके नहीं चलते। सो किसी भी काम नूं छोटा ना गिना जाए, हर काम की प्लैनिंग करनी बहुत ही जरूरी है। दिन की प्लैनिंग करनी जरूरी है, कितने जाना है ट्रैवलिंग दे ले जा रहे हैं तद भी प्लैनिंग करनी बहुत जरूरी है। जेकर असी अपने बच्चे का शेड्यूल बना रहे हैं, उन्हें पढ़ाना है, उसकी एक्टिविटीज़ करवानी है, तद भी प्लैनिंग बहुत जरूरी है। कोई भी काम बिना प्लैनिंग तो नहीं करना, क्योंकि काम तो करना ही है, और जेकर असी 5-7 मिनट पहला लगा लेंगे तो वो रिजल्ट बहुत सोहने आते हैं। सो प्रोग्राम गीत बहार के इसी तरह ही बने रहना मेरे नाल, एंजॉय करते रहो। तो हुण विशाल मिश्रा जी की आवाज़ के आओ एंजॉय करते हैं यह गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार ते गीतां दी वाकई लगी हुई है बहार। सो दोस्तों, गीतां दी बहार दे विच विच ना मैनू भी आना पैंदा है, मेरा ना फिर मन नहीं लगता, मैं कहनी नहीं नहीं मेरी भी बारी आ गई।

0: एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का और पंजाबी गीता दे सिलसिला चल रहा है जी। और लगातार कॉलर्स या सानू कॉल्स आ रही ने, कल करते हैं अगले कॉलर्स कौन पहुंचे ने। हेलो
1: हेलो मैडम, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: हाँ जी, सुरेंद्र सिंह मल्लाकरारखा बोर्ड वाला चौक जलंधर।
0: स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच, की हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, तुसी सुनाओ
0: की कर रहे हो फिर?
1: बस रेडियो सुन रहे हैं जी।
0: रेडियो सुन रहे हो?
1: हाँ जी, घर ही बैठे हैं।
0: क्या बात है, ते फिर खा पी लिया, खाना खुना खा लिया?
1: नहीं, नाश्ता जी होना जी।
0: अजे होना है?
1: हाँ जी।
0: ए केड़े टाइम दा नाश्ता होया?
1: मैं सवेरे चाय पीना जी, ते नाश्ता यानी कि 12 बजे करता।
0: ठीक है, ब्रंच कर दो फिर, लंच दी छुट्टी है?
1: लंच दी छुट्टी।
0: ठीक है ठीक है, चलो वधिया। ते फिर मैनू दसो कि अज गीत केड़ा सुनना तुसी?
1: हंसराज हंस दा नच्ची साडे नाल।
0: अच्छा जी, जरूर प्ले करांगे। ते यही गाने दी फरमाइश क्यों?
1: बस जी, रोमांटिक गाना सुनने दा शौक हैगा, जां हिंदी गाने पुराने।
0: ठीक है, ते सब तों ज्यादा सिंगर कौन पसंद है, केड़ा सिंगर पसंद है?
1: सिंगर सारे ही है जी, तकरीबन कोई ऐसा जहा नहीं है जरा नहीं पसंद, सारे पसंद है। रेडियो दे बहुत शौकीन हां मैं।
0: ते फिर तां गा भी लैंदे होवोंगे? जे गीत सुनते हो तो गाते भी हो गए, तो फिर अज गीत के गा के सुनाओगे?
1: नहीं मैडम जी,
0: नहीं गाना? नहीं गा सकते हो, एक अद्धी लाइन।
1: मेरे प्रॉब्लम हैगी है, मैं ऑपरेट कराया हुआ है, मेरे को आवाज साफ नहीं निकलती।
0: ओहो चलो कोई गल नहीं, तुसी रेस्ट करो, जो तुसी ठीक हो जाओगे ना फिर तुसी कॉल करके गाना सुनाना।
1: ठीक है,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए जी।
1: थैंक यू मैडम।
0: तो लो जी, फरमाइश हुई है हंसराज हंस की आवाज़ के गीत सुनना, नची जो साढ़े नाल।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो, तो ये प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम। दोस्तों होम स्वीट होम कदों अच्छा लगता है, साढ़े घर कदों सोहना लगता है, जो चंगी तरह डेकोरेट किया हो, साफ सुथरा होवे, डेकोरेट किया हो। सो साफ सफाई की गल असी कर चुके हैं, तो हूँ आने जी डेकोरेशन वाल, किवें असं अपने घर को सब तो अलग सब तो सोहना बना सकते हैं। तो हैंगिंग लाइट्स का मैं जिक्र करांगी जी, डाइनिंग एरिया के हैंगिंग लाइट्स का कितना इंपोर्टेंट रोल है वो बारे गल करांगे। डाइनिंग टेबल दे उपर आजकल हैंगिंग लाइट्स लग रही हैं, ये नाल सिर्फ रोशनी ही नहीं मिलती, रोशनी दे परपज़ ले ही नहीं लगाईया जांदियां, बल्कि ये मूड भी तय कर दे, पूरे स्पेस का मूड तय कर दिया, और लाइट दे नाल इस एरिया दे विच वार्मथ आ जाती है, गर्माहट आती है, और खाने के टाइम पर ऐसी लुक जो होंगी है एरिया की तो बहुत चंगी लगती है। किदा दियाँ लाइट्स यूज़ कीतियाँ जा रही ने, स्टोन ते केन लाइट ये यूज़ हो रही ने। ये लाइट्स है जड़ियाँ आरामदायक माहौल दिंदियाँ ने, वार्मथ दिंदियाँ ने, और सोहनिया लगदियाँ, एक लड़ी दे विच परो के भी असी लगा सकते हैं। और खासकर जिहड़े इको फ्रेंडली थीम वाले घर ने उन्हां दे विच इहदा ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, अक्सर देखा जा रहा है, हैंगिंग लाइट्स लगाइया जा रही ने। और क्लस्टर पेंडेंट लाइट्स, क्लस्टर पेंडेंट लाइट्स दे विच की है जी, अलग उचाई ते कई लाइटां कट्ठियां लाइया जांदियां ने, और डाइनिंग एरिया दे विच आर्टिस्टिकल फोकल पॉइंट तैयार किया जाता है, और छोटे वड्डे डाइनिंग स्पेस दे विच ये डिज़ाइन बहुत अवेलेबल हैगे ने, और पूरे कमरे नू जीवंत कर देंदे है, और सारा कमरा रोशन आ जांदा है। और इस तो इलावा मल्टी ग्लोब हैंगिंग लाइट्स है, ग्लोब दी फॉर्म दे विच गोले गोले जे हुंदे ने, ते ओ लाइट्स लगाईया जांदियां ने, मल्टी ग्लोब हैंगिंग लाइट्स भी अच्छियां लगदियां ने, ग्लास बॉल्स दे विच इह लटकदियां ने, ते इहदे नाल भी साडा जिहड़ा डाइनिंग स्पेस है वह बहुत अच्छी तरह एलूमीनेट हो जाता है। और इस तो इलावा लीनियर पेंडेंट लाइट्स भी लोगों की पसंद बनी हुई है। लीनियर पेंडेंट लाइट्स मतलब एक सीधी लंबी लाइन दे विच डाइनिंग टेबल दे उपर लाइटां लटकाइया जांदियां ने, ब्लैक गोल्डन या मैट फिनिश दे विच उपलब्ध हुंदियां ने, और एलीगेंट और स्टाइलिश लुक आती है। और दोस्तों जदों भी असी ये लाइट्स लगानियां ने, और ये उचाई का खास ध्यान रखा जाए, इदा ना हो कि खाना खा के उठो तो सिर विच लाइट वज जाए। सो ये रोशनी दे परपस दे लई लगानियां ने, ते पर इहदे विच ये है कि किसी दे लई ये मुश्किल ना क्रिएट करन, समस्या ना खड़ी करे। सो जदों भी लगानियां ने उचाई का खास ध्यान रखा जाए, तो फिर ये लाइटा ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਮਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ।

कल और आएंगे नगमे की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। एक महान शायर दी ए सादगी ही उन्होंने अमर बनाती है। चलो फलसफे तो हूँ अगे चलते हैं मुहब्बत दे उस खूबसूरत गुफ्तगू वाल, जिथे प्रेमी अपनी महबूबा नू अजे ना जान दी गुजारिश कर रहा है। संगीतकार जयदेव दी धुन ते साहिर साहब दे लफ्ज़ ते गाया है रफी साहब ते आशा जी ने। गीत अभी ना जाओ छोड़कर।

के दिल अभी भरा नहीं। मोहब्बत विच दिल पर्दा भी कित्थे है जी। दोस्तों प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो मिड डे मेलेडीज़ ते। अज असी जिक्र कर रहे हैं साहिर लुधियानवी जी का। दोस्तों साहिर साहेब जिथे रोमांस लिखते सन उथे ही जिंदगी दे सच अते जिंदा दिली नू भी बखूबी जानते सन। जिंदगी विच मुश्किलां तां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने, पर जीवन दा अंदाज़ अजिहा होना चाहिए है कि हर फिकर धुएं विच उड़ जाए। ते आओ सुनदे हां बेफिक्री नाल भरिया अगला गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

उड़े जब जब जुल्फे तेरी, क्या बात है, पूरे ऊर्जा नाल भरपूर गीत। पर स्रोते हो साहिर दी खूबी ए सी कि जिथे वो अजिहा रोमांटिक गीत लिख सकते सन, उथे ही उस फिल्म विच वो देश के मजदूरां अते आम लोगों की ताकत नू एकजुट करन वाला गीत भी लिख सकते सन। ये गीत अज भी साड़ी एकता की मिसाल है। साथी हाथ बढ़ाना।

एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एलाइना अज भी रूह नूं जगा दिंदियां ने। सो इस भारी माहौल तो बाद दोस्तों आओ तुहानूं लै चलदे हां यश चोपड़ा दे रोमांटिक सिनेमा वल। साहिर साहिब ने अपनी निजी शायरी दी किताब तलखियां विचों एक खूबसूरत नज़म फिल्म लई चुनी, जो अज भी हर आशिक दी पहली पसंद है। गीत कभी कभी मेरे दिल में। एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है दोस्तों, मोहब्बत दी इस तो सोहनी पेशकारी शायद ही कोई होर होएगी। तो जदों मोहब्बत विच साथ निभाउण दा वादा होवे तां दुनिया दी कोई भी मुश्किल वड्डी नहीं लगदी। संगीतकार रवि दे संगीत विच महेंद्र कपूर दी आवाज़ विच सजिया अगला गीत हर दिल नूं एक नवा हौसला दिंदा है। तुम अगर साथ देने का वादा करो।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा EIG रेनबो चैनल। मैं हाँ जी तुहाड़ी दोस्त RJ सुरभी ते प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है जिसका नाम है दिल आज शायर है। सो मेरे प्यारे लिसनर्स, अज का बड़ा खास विशा मैं लैके आई हाँ। फिलहाल कई बार मैं अलग अलग विशा लैके आँदी हाँ तो सारे अप मेरे विषय को मतलब कि जड़ा मैं विशा दिनी हाँ वो अलग अलग शायरी मैं भेजते हो तो बड़ा चंगा भी लगता है। अज भी एक लफ्स मैं याद आया है जो है खामोशी। एक खामोशी ना बड़ी अलग चीज़ है, यानी कि कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाती है खामोशी। सो खामोशी एक ऐसा लफ्स है जिसनों सुनिया नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। कई बार इंसान हजारा शब्द बोल के भी ना अपनी गल नहीं कह सकता, तो कई बार एक खामोशी ही सब कुछ बयान कर जाती है। सो दोस्तों कहते हैं जिते शब्द हार जाते हैं उत्थे खामोशी बोलती है, पर हर खामोशी इको जी नहीं होंगी। किसी की खामोशी विच सुकून होंगे तो किसी की खामोशी विच शिकायत, तो किसी की खामोशी विच इंतजार, तो किसी की खामोशी विच टुटे हुए सुपनिया की आवाज़ लुकी होंगी है। ये नाम भी बहुत सारे हैं जिमें खामोशी, चुप, मौन, सन्नाटा, इंग्लिश साइलेंस कह सकते हैं। ना भावें ये वक् वक् हैं पर एहसास इको है, ओ जो बिना बोले दिल तक पहुंच जावे। ते बस फिर मेरे जिहड़े जज्बात ने हुण अज मैं अपने जाहिर करांगी शायरी थ्रू। अज सारे जज्बात तुहाडे नाल जुड़े होणगे ते लव्स मैं तुहानू दस दित्ता ना खामोशी। उम्मीद करदी हां कि तुसीं खामोशी ते बहुत सोहणा लिखोगे ते इस लफ्ज़ दे नाल तुसीं अपनी दिल दी गल भी कह सकते हो। कई बार असी किसी नूं बहुत कुछ कहना चाहुंदे हां पर आपां खामोश हो जांदे हां, पर जिहड़ा सानूं दिल च आउंदा है ना उहदी खासियत पता की हुंदा है? उहदी खासियत इह हुंदी है कि उह साडी खामोशी तों वी सानूं समझ लैंदे ने, सानूं पढ़ लैंदे ने कि असी की कहना चाह रहे हां। सो लो जी करना की है, बस जी वट्सअप नंबर साडा 9855 10 10 23 9855 10 10 27 यह है जी साडा वट्सअप नंबर। इस वट्सअप नंबर पर तुसीं सानू अपनी शायरी भेज सकते हो जी, ते फिर इंतज़ार करेगी तुहाडी दोस्त RJ सुरभी तुहाडा जल्दी जल्दी अपनी दिल दी गल अपनी दोस्त तक पहुँचाओ।

दिल की बात दिल में रह गई, दिल की बात दिल में रह गई, मोहब्बत अधूरी कहानी बन गई। जिसे अपना समझा था कभी, जिसे अपना समझा था कभी, वो आज किसी और की जिंदगी बन गई। एहसान पेजी से शायरी मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरवान पेंट खुर्द जिला मलेरकोटला तो। चलते हाँ जी अगली शायरी वाल। इस तो पहले मैं तुम दस दाँ कि प्रोग्राम चल रहा जी दिल आज शायर है। मैं हाँ जी थोड़ी दोस्त आर जे सुरभी। तो प्रोग्राम के सानू बड़े सारे साडे लिसनर्स शायर बन के अज शायरी भेज रहे हैं। अगले शायर वाल चलते हाँ जी। कहते हैं जिथे लफ्ज़ मुक जान उत्थे दिल गल्लां करता है। ये मैं अगली लाइन बोलती है, पहली लाइन कुछ होर सी, माफ़ी चाहती हाँ। कहते ने खामोशी भी कदे कदे सब तो वड्डी आवाज़ हुंदी है। खामोशी भी कदे कदे सब तो वड्डी आवाज़ हुंदी है। जिथे लफ्ज़ मुक जान उत्थे दिल गल्लां करता है। बिल्कुल सही कहा। देखो कई बार दो चाहन वालियां दे विच ना कोई गल नहीं हुंदी कई बार, क्योंकि उन्हां दे सिर्फ लफ्ज़ बोलते हुंदे है और उन्हां लफ्ज़ां दे विच ही उन्हां दी सारियां गल्लां हो जांदियां है। ये प्यारी जी शायरी सानू भेजी सी जी किरण नरूला होना ने ग्रीन पार्क कपूरथला तो। अगे वधदे हां जी अगले शायर दे कोल जांदे हां, देखते हां उन्हां ने सानू की भेजिया है जी। ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਾਤ ਕੀ ਧੜਕਨ ਜਬ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੀ ਧੜਕਨ ਜਬ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਸੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਹੈ 98 55।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।

0: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के

0: एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं, उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अपने श्रोताओं की ओर

0: से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्यपूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात
0: बिल्कुल
1: है।
0: बहुत जरूरी
1: कई बार ये
0: है।
1: होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती है। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से।
0: जी,
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
0: जी।
1: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: जी।
1: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
0: जी।
1: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
0: तो आराम कर लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
0: जी हाँ जी।
1: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
0: जी, जी।
1: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और

0: के साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है। जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों

0: असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है?
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो,
0: हम्म,
1: स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता
0: हो
1: है,
0: सकता है
1: वही
0: बिल्कुल
1: पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो
0: हम्म,
1: आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता
0: बिल्कुल
1: है।
0: जी
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है,
0: जी
1: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
0: जी
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
0: जी उसी को
1: इसके
0: आगे निखार
1: अलावा
0: बिल्कुल
1: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य,
0: जी
1: बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं।
0: जी
1: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
0: हाँ होती
1: तो
0: है
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया वो
0: प्रयास तो
1: सफल
0: किया
1: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
0: जी
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
0: हाँ होता है
1: तो
0: जी
1: इसका मतलब क्या हुआ,
0: जी
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
0: जी
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो
0: जी
1: क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें।
0: जी
1: अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
0: थोप
1: जैसे
0: देते हैं
1: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
0: हाँ प्रोत्साहित करें
1: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है,
0: जी
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
0: जी
1: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो
0: जी
1: टाइम टेबल
0: बिल्कुल
1: के अनुसार उसका हम
0: जी
1: काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
1: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं,
0: जी
1: 8-44-844-0632, 8-44-844-0632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं।
0: जी
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansal@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट

0: साइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी के आसपास पशु पक्षी होते हैं जिनमें कुछ पेट्स यानी पालतू जानवर हैं तो कुछ हमारे घरों के आसपास हमें दिखाई देते हैं जिनके संपर्क में हम जाने अनजाने आते ही रहते हैं। बेशक जानवरों से प्रेम करना ज़रूरी है, साथ साथ ज़रूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना भी। इसी बात के मद्देनज़र हम जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे वो है ज़ूनोसिस। क्या है ज़ूनोसिस और कैसे रहे इससे सुरक्षित, इस विषय में जानेंगे विस्तार से, क्योंकि आज है वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। आज के विषय से जुड़ी आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। तो आप दो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हम इधर स्वागत करते हैं अपने दोनों विशेषज्ञों का। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के रसानिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि विश्व ज़ूनोसिस दिवस क्या है और इसे 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आज विश्व ज़ूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास ये है कि लुई पाश्चर, जिन्होंने 1885 में रेबीज वैक्सीन की सफलता की याद में ये दिवस शुरू किया गया था जी। उन्होंने पहली बार रेबीज वैक्सीन एक बच्चे को लगाई थी जिसको रेबीज डॉग ने काटा था और उसका सफल परीक्षण किया था। इसका उद्देश्य हर साल मनाने का यह है कि लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करना, इसका उद्देश्य है
0: जी। बहुत ज़्यादा विस्तार से आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हम श्रोताओं से लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसको गौर से सुने। आपका भी कोई सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि ज़ूनोटिक रोग क्या होते हैं और इनका मनुष्यों और जानवरों से क्या संबंध है?
1: देखिए, ज़ूनोटिक रोग वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। देखा जाए तो लगभग 60% रोग जो हैं मनुष्यों में, जो आज की डेट में हो रहे हैं, वो जानवरों से होते हैं। और जो नई बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, 75% बीमारियां जो हैं ये कहीं ना कहीं जानवरों द्वारा फैलाई जा रही हैं। और इसका कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, परजीवी हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60% संक्रामक रोग ज़ूनोटिक रोग होते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: शुद्धम संगीत से प्रेम हो, पशु पक्षियों से प्रेम हो, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने बहुत ही प्यारा सा भी गीत सुना, लेकिन जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है कि हमें सुरक्षित रहना भी है, हमें जानवरों की सुरक्षा भी करनी है, पशु पक्षियों की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है कि पालतू पशुओं से भारत में सबसे आम जूनोटिक रोग कौन कौन से हैं जिनसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं?
1: देखिए, हम लोग पेट के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं, बिकॉज इसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इवन कैटल्स हैं, डेयरी फार्म है, पिगरी हैं, तो ये जो कि इन कांटेक्ट रहते हैं ह्यूमन के साथ। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मेरे मन में, जो सबके लोगों के, इवन ए लेमैन के मन में सबसे पहले ध्यान यही आता है कि रेबीज डिजीज़ ऐसी है जो डॉग से या एनिमल से ह्यूमन को होती है, तो उसकी प्रिवेंशन भी होती है, लेकिन अगर वो उसके सिम्टम्स आ जाएं तो वो 100% फेटल डिजीज़ होती है। तो इसलिए हम लोग लोगों को अवेयर करते रहते हैं, ना कि डराते हैं कि आप डॉग से दूर रहें, बट अवेयर रहेंगे तो आप रेगुलर वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसको अपने डॉक्टर के साथ बात करेंगे, उसके कोई ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसलिए रेबीज, आई मीन डॉग से आप ऐसे डरे नहीं कि हर डॉग इज़ नॉट ए रेबीज डॉग, दे आर नॉट बॉर्न विद दिस डिजीज़, लेकिन अगर वो उसको एनवायरनमेंट से या किसी और वाइल्ड एनिमल से रेबीज डॉग ने या रेबीज एनिमल ने उसको काटा है, तो उसको रेबीज अगर हो गई है तो वो रेबीज, अगर वो रेबीज डॉग अगर आपको काटेगा तभी रेबीज होती है। ऐसे हर डॉग बाइट एक रेबीज बाइट नहीं होती। और एक बड़ी मिथ है कि अगर जैसे विलेज में या ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, अगर डॉग ने काटा है तो लोग वहाँ मिर्च लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर ओपन वुंड को आपने मिर्च या हल्दी से बंद कर दिया तो वो वायरस अगर है तो वो मल्टीप्लाई ऑक्सीजन

0: कि ऑक्सीजन एब्सेंस में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और इन्वेड कर सकता है इन द बॉडी, वो डेंजरस है, वो नहीं करें। सबसे पहले अगर किसी भी एनिमल ने आपको बाइट किया, उस एरिया को आप 15 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में सोप के साथ क्लीन करते रहें और इमिडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दे'ल गिव द एंटी रेबीज बूस्टर्स और इम्यूनोग्लोबुलिन जो डॉक्टर उस टाइम पे उचित समझेगा।
1: जी, ये सिर्फ डॉग्स के मामले में है या जैसे बंदर काट लेता है, बिल्ली भी काट लेती है, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है?
0: हाँ, लाइक अगर वो रेबिड है तो ही, अदरवाइज ऐसे सिंपल बाइट तो वही ट्रीटेड एज ए ओपन वूंड ओनली। बट प्रिकॉशनरी, अगर हिस्ट्री नहीं है, एनिमल इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी इवन मेडिकल डॉक्टर्स दे एडवाइज टू टेक प्रोफाइलेक्टिक डोजेस लाइक 0 डे, 3rd डे, 7th डे, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द वूंड। तो इसलिए कोई भी बाइट को आप सीरियसली नहीं ले, हमें सीरियसली लें और उसको अच्छी तरह वॉश करें और अपने डॉक्टर से बात करें।
1: जी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं बाइट हो गई है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अरे थोड़ा सा है।

0: लेक्टिक डोजेस लाइक 0 डे, 3rd डे, 7th डे, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द वूंड. तो इसलिए कोई भी बाइट को आप सीरियसली नहीं ले, हमें सीरियसली लें और उसको अच्छी तरह वॉश करें और अपने डॉक्टर से बात करें.
1: जी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं बाइट हो गई है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अरे थोड़ा सा है, खरोच लगा है या कुछ है, बहुत अवेयर
0: देखो,
1: रहने की
0: एनिमल से
1: जरूरत है.
0: बहुत डिजीज़ कम्युनिकेबल होती हैं. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 70% डिजीज़ ऐसी हैं जो एनिमल से ह्यूमन को होती हैं. तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रेबीज़ है. लेकिन अगर उसका आपने क्लीनिंग अच्छी नहीं, हाइजीन नहीं किया, जहाँ आपके पेट्स हैं, यूरिन है, अगर वो इन्फेक्टेड है लेप्टोस्पायरा से, तो इवन ह्यूमन कैन गेट लेप्टोस्पायरा, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि फेटल हो सकती है लेटर ऑन.
1: जी
0: ऐसे ही एक स्केबीज इन्फेक्शन है जो स्किन डिजीज होती हैं, अगर आपके पेट को है तो आपको भी हो सकती है. तो अगर आपको लगता है आपके पेट में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है, तो इमीडिएटली आपने वेटनेरियन से बात करें,
1: जी
0: तो उसको सेफ रखें और आप, मुझे लगता है आप भी उससे सेफ रहेंगे.
1: जी डॉक्टर एस के रसानिया जी, आपके पास आना चाहूँगी. जूनोटिक बीमारियाँ कैसे फैलती हैं और इनके प्रमुख संक्रमण के रास्ते कौन कौन से माने जाते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. देखिए, बीमारियां फैलने के बहुत कई तरीके हैं जो बीमारी पेट ये जानवरों से फैल सकती है. एक तो, यदि कोई व्यक्ति सीधे संपर्क में आए, डायरेक्ट कांटेक्ट, तो संक्रमित जानवर को छूने से, उसको पालने से, उसको काटने या खरोंचने से, या उस जानवर के सलाइवा, खून या पेशाब या बलगम के संपर्क में आने से हो सकती है. इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है कि जैसे उन जगहों पर जहां आप जानवर रहते हैं, जैसे कि दूषित मिट्टी, एक्वेरियम का पानी, पालतू जानवरों के बर्तन, मुर्गियों के दड़बे, उनमें जाने से हो सकती है. तीसरा हो सकता है कि जो इंसेक्ट बाइट, कीटों के काटने से, जैसे कि कोई टिक्स या फ्ली हुए या जूं हुई, उसे काटने से भी कई बार संक्रमित जानवरों को काटे और वो यदि मनुष्य को काट लेगा तो उसमें भी रोग हो सकता है. या दूषित भोजन के द्वारा, जैसे कच्चा या अधपका मांस खाया, बिना उबला मांस खाया, या इन्फेक्टेड दूध पिया उस जानवर का, या ऐसा भोजन खाने से जो कि जानवर के मल से दूषित है, उससे भी ये बीमारियां फैल सकती हैं. तीसरा, एक और मुख्य कारण है दूषित पानी द्वारा. जैसे ऐसे पानी को पीने से, उसके संपर्क में आने से, जिसमें संक्रमित जानवर का यूरिन या उसका मल यदि मिला हुआ है, तो वो यदि ले लेगा तो उसमें हो जाएगा. तो कई प्रकार के जूनेटिक बीमारियां हैं, उसको कई कैटेगरी में बांट सकते हैं. जैसे कुछ वायरल बीमारियां हैं, कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं, कुछ पैरासिटिक या परजीवी बीमारियां हैं, कुछ फंगल बीमारियां हैं. तो अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं. जैसे, मगर मुख्यतः जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रेबीज़ है, इबोला वायरस है, ब्लू फ्लू, कोविड-19 है, फ्लू है, या सोलमोनेला है, प्लेग है, एंथ्रेक्स है.
1: कोविड-19
2: भी
1: उसी सीरीज
2: जी
1: में
2: जी
1: है.
2: उसी सीरीज में, क्योंकि कोविड-19 किसी टाइम चमगादड़ से ये मनुष्यों में, चमगादड़ के जो फीकल मैटर था उससे ये आया, तो कहीं ये सब उससे, ये सब उससे रिलेटेड है.
1: जी
2: जी
1: डॉक्टर साहब, वन हेल्थ अवधारणा क्या है और जूनोटिक रोगों की रोकथाम में इसकी क्या भूमिका है?
2: देखिए, वन हेल्थ जो है वो, उसको तीन कंपोनेंट इसमें वन हेल्थ में है. एक है ह्यूमन हेल्थ, यानी मनुष्य का स्वास्थ्य. तीसरा, दूसरा है एनवायरमेंट हेल्थ, यानी कि वातावरण का स्वास्थ्य. तीसरा है एनिमल हेल्थ, यानी कि पशुओं का स्वास्थ्य. यदि, जैसा मैंने आपको बताया कि 60% या 75% बीमारियाँ मनुष्य के अंदर जो हो रही हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं उसमें एनिमल इन्वॉल्व हैं. तो कहीं ना कहीं इन तीनों का इंटरेक्शन, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ,
1: जी,
2: तीनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है. उसके ऊपर अगर एक साथ मिलकर काम किया जाए, तो उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो वन हेल्थ अप्रोच है.
1: जी,
2: ये 2022 में एक कंसेप्ट हिंदुस्तान में आया था कि इसको लेके, इस पे कार्य हुआ था, ताकि विभिन्न मंत्रालय, लगभग 13-14 मंत्रालय या विभिन्न विभाग हैं जिसमें मिलकर काम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो उस अप्रोच के माध्यम से इसमें काम हो रहा है.
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे जानने को हैं और लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे. श्रोताओं को भी बता दें कि अगर इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो के नंबर्स है 01123421080 और 01123421082. आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070. फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटरिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। और आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही अहम विषय पर कि आप कैसे, अगर जानवरों के आसपास हैं, पशु पक्षियों के आसपास हैं, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। ये है देवदत्त परसौलिया जी का, प्रताप विहार गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन्होंने धन्यवाद किया है, लेकिन देवदत्त जी अगर आप अपना कोई सवाल करते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल डॉक्टर साहब, आर टी शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन से एनिमल को भी क्या कोई रोग हो सकता है?
2: हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज मैं अपने वॉइसलेस जो क्रिएचर है उनके लिए बैठा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कल्प्रिट बनाया जाता है एनिमल्स को, कि 70% डिजीजेस इंसान को जानवर से होती है। पर मैं जब सोच बोलता हूँ कि जो कल्प्रिट हैं अभी ह्यूमन भी हैं, उन्होंने फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, जंगल ख़त्म कर दिए, वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने। उनको कोई न फ्रूट के ट्री लगाए, न कुछ लिया, तो वो वाइल्ड लाइफ जब आपके अर्बन एरिया में आएंगी तो वो डिजीजेस तो फैलाएंगी। पर इसका जो कल्प्रिट है मुझे लगता है ह्यूमन खुद है। तो इसलिए हमें अपना फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ये पूरा क्लीन रखना चाहिए, और उसका उन जानवरों के लिए भी जगह देना चाहिए, बिकॉज दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम आल्सो। और बहुत सी ऐसी डिजीजें हैं जो ह्यूमन से हमारे पेट में होती हैं, जैसे एक फ्लू है, नॉर्मल वायरल इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो इंसान जैसे सोर थ्रोट होता है, फिर किसी को खांसी होती है। तो अगर कोई पेट जिसकी इम्यूनिटी लो है, जो बहुत क्लोज इंटरेक्टिव में रहता है अपने पेट, अपने ऑनर के साथ या उनके साथ सोते हैं, तो हमने पाया कि उनमें भी इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, और वो उनके भी सोर थ्रोट होते हैं, खांसी करने लग जाते हैं। वो 8-10 दो इससे सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन डिजीज़ तो है। अगर किसी को और कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है हमारे पेट को, तो इट कैन बिकम ए वेरी सीरियस इन्फेक्शन। तो आप ध्यान रखें कि जैसे कोरोना है, अगर कोविड में भी हमारे पेट्स को बहुत एक्सपोजर हुआ था और बहुत केसेस आए थे, तो ऐसे में ह्यूमन से एनिमल को भी डिजीज़ होती है, इसको रिवर्स जूनोसिस बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे पास अनुज जी का मैसेज आया हुआ है, दिल्ली से ही लिख रहे हैं कि क्या बर्ड्स से भी इन्फेक्शन हो सकता है?
2: या बर्ड जैसे पिजन्स हैं, इनका जो लाइक शिट है उससे भी आप कोक्सीडियोसिस एक इन्फेक्शन हो सकती है। तो फ्लॉक में रहते हैं तो एनी फंगल इन्फेक्शंस कैन बिकम ए सीरियस इन्फेक्शन इन द लंग्स। अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लो है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है कि वन हेल्थ मिशन जूनोटिक रोगों और महामारी के रोगों में कैसे मदद करता है रोकथाम के लिए?
3: देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये जो वन हेल्थ मिशन है, इसमें क्या है कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ एक साथ है। जैसे एक तो इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस, एकीकृत सर्वेलेंस निगरानी, मतलब सभी उसमें तीनों कंपोनेंट का, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट हेल्थ, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, या आप बाकी मनुष्य के हेल्थ है, उन तीनों का एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस। कहीं भी कोई बीमारी होगी उसका इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस करना। दूसरा, कहीं भी अगर जल्दी चेतावनी, कहीं भी अगर कुछ हो तो अर्ली वार्निंग क्रिएट करते हैं, कहीं भी अगर कुछ भी आउटब्रेक होगा उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम। प्लस डाटा शेयरिंग, कहीं भी अगर कुछ होगा तो ये नहीं कि एक ही विभाग एक ही चीज़ देखेगा, आपस में सब साझा करेंगे कुछ भी अगर आउटपुट होगा तो। और प्लस रैपिड एक्शन सिस्टम, कहीं भी अगर कुछ होगा तो उसके तुरंत त्वरित कार्रवाई करी जाएगी इसमें। तो इसमें रेबीज हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, निपा जैसी जो बीमारियां हैं, तो शुरुआत में इनको, जैसे केरल में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तुरंत उसमें रैपिड एक्शन हुआ और काफ़ी हद तक बहुत जल्दी ही उसको कंट्रोल में कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक, बहुत सहयोगी देती है।
1: जी, हमारे कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कौन है और उनका क्या सवाल है। जी, आपका

0: में भी सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, तो ये इस रूप में सभी लोग इसमें मदद कर सकते हैं।
1: जी, तो पर्यावरण भी सुरक्षित रखें, क्योंकि वजह हम खुद होते हैं अगर कोई समस्या पैदा होती है तो, क्योंकि चेन है हमारी जो बनी हुई, कहीं ना कहीं अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे लिए खुद वो मुसीबत सामने आ जाती है, ऐसा हम कोविड के टाइम पर देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है दिल्ली से परिधि जी का। ख़ास करके आप आरटी शर्मा सर से सवाल कर रही हैं कि मेरे घर में 5 वर्षों से बिल्ली है और कई सालों से ये उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन इनका बताना है कि ना तो वो पिंजड़े में रहना पसंद करती है, ना ही उसको नहाना पसंद है। तो ऐसे में मतलब कैसे केयर की जाए इन जैसे एनिमल्स की, और क्या इससे कोई ख़तरा हो सकता है कि अगर ये साफ़ सुथरे ना रहें?
2: देखिए, सबसे पहले हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द ह्यूमन बींग्स। लेकिन कैट आपने रखी है तो सबसे ज़्यादा वो उनको ग्रूमिंग ज़रूर करते रहें। शेडिंग होता है, वो कैट अपने आप को भी खुद साफ़ करती है, तो जब साफ़ करते हैं तो बहुत से हेयर बॉल अपने इंजेस्ट कर लेते हैं। जब वो खा जाते हैं तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर वो खाना बंद करेंगे, फिर वो वॉमिट करने लगते हैं, किसी किसी टाइम तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें, आप रेगुलर ग्रूम अगर करते हैं और उसको रेगुलर वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं, और कैट को कभी भी केज में मत रखिए, दे आर इंडिपेंडेंट एनिमल। वैसे भी किसी एनिमल को केज में नहीं रखना चाहिए, दिस इज़ क्रुएल्टी टू द एनिमल। तो अगर आपने कैट रखा है और उसको स्टरलाइज करवा दीजिए तो घर से बाहर नहीं जाएगी। जैसे डॉग्स एक परमानेंट पेट इनसाइड द हाउस होते हैं, ऐसे कैट्स नहीं होती हैं, बिकॉज जब वो वेन एवर दे कम ऑन देयर साइकिल दे ट्राई टू रन अवे, थोड़ा वाइल्ड इंस्टिंक्ट रहता है। तो कैट को अगर आपने रखा है तो उसको स्टरलाइज करवा के रखें, न्यूटर कर दें, तो वो घर से बाहर नहीं जाती, और बाहर जाएंगी तो इन्फेक्शन ही लेके आएंगी। तो आई थिंक आप 5 साल से रखा है तो मुझे लगता है अगले 10 साल और आपके साथ रहने वाली।
1: जी, आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं सर।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, नाम बताएं अपना।
3: जी, गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम जी, क्या सवाल है आपका?
3: हाँ, मेरा कहना है कि हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र में जब कुत्ता काटता है तो रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं, तो कुछ लोग एक ही इंजेक्शन लगवाते हैं, बाकी के इंजेक्शन नहीं लगवाते।
1: जी,
3: तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? क्या हमें पूरे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन से प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है? कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी
0: गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और सभी की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये कि जैसा डॉक्टर शर्मा ने पहले ही बताया था कि यदि कभी भी कोई भी जानवर, पालतू जानवर, यदि वैक्सीनेटेड है तो कोई बात नहीं, यदि अनवैक्सीनेटेड, जिसको टीकाकरण नहीं किया हुआ, या कोई जंगली जानवर ने किसी को काटा है, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उसको, हम लोग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक में तो ये कि अगर उसको कहीं स्किन में जरा सा कहीं स्किन इंटैक्ट है, उसमें स्किन में कहीं कोई ज़्यादा कुछ नहीं आया, चाट लिया कुत्ते ने या किसी ने भी। दूसरा है कि कहीं स्किन में कहीं ना कहीं वो खरोंच आ गई, और तीसरा कहीं उसने अच्छी तरह से नोच लिया है आपके मास्क को। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह से इलाज है उसके अंदर। सबसे पहली चीज़ यदि कहीं ना कहीं अगर स्किन यदि छिल गई है या कहीं घाव आ गया है, तो उसको 15 मिनट तक साबुन से और तेज रनिंग वाटर में पानी से उसको धोएं अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। उसका फ़ायदा क्या है कि क्योंकि जो कीटाणु होता है, रेबीज़ का कीटाणु जो होता है, उसके अंदर एक साबुन से यदि उसको करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो जाता है। तो 15 मिनट तक लगातार उसको धोएं अच्छी तरह से, और उसके बाद में यदि तुरंत कहीं पास के नज़दीक का अस्पताल जहाँ पर टीकाकरण होता है, तो टीके जिसमें 2 तरह के लगते हैं, एक होता है जो कि खाल में लगाया जाता है, इंटरडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं, एक होता है जिसको मास्क के अंदर लगाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर जो वहाँ पर आपके एंटी रेबीज क्लिनिक है वहाँ पर कौन सी तरीके का लगाया जा रहा है। तो उसमें जो खाल के अंदर टीका लगाया तो 4 टीके लगते हैं, और जो मगर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगता है वो 5 टीके लगते हैं। तो ये एक टीका कभी नहीं, वो डॉक्टर्स जो एंटी रेबीज क्लिनिक जो भी आपके नज़दीक में है, तो वहाँ जाके जो भी डॉक्टर वहाँ पर है, ये जो उस क्लिनिक में लोग हैं, तो वहाँ पर एक टीका कभी नहीं, एक टीके से कभी कुछ नहीं काम चलता। वो एक टीका यदि उसमें 2 तरह का, एक तो होता है वैक्सीन, दूसरा होता है सीरम। सीरम ये तब लगाया जाता है जबकि खाल अगर छिल जाए और उसमें कहीं इन्फेक्शन होने के, वो ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सीधे उस घाव में लगा दी जाती हैं।
1: जी,
0: तो वो दोनों जरूरी हैं। तो इसलिए मगर कहीं ना कहीं आप एंटी रेबीज क्लिनिक में जाकर, जहाँ कुत्ता काटे का इलाज होता है, वहाँ पर जाकर सरकारी उसमें जाके अपना इलाज कराएं। जी
1: डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, जोया जी

0: मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि डॉग्स लवर जो होते हैं अक्सर बेड पर रखते हैं अपने डॉग्स को, साथ में सोते हैं उठते हैं और उनके आसपास हमेशा रहते हैं, साथ साथ कभी कभी मुंह भी चाट लेते हैं, तो इस तरीके की जो आदत है क्या कहीं ना कहीं मुसीबत का विषय है?
1: देखिए, डॉग के सलाइवा में अगर कितना भी वो हाइजीनिक आप रखें तो थोड़ा इन्फेक्शन तो रहता है, जैसे साल्मोनेला या स्यूडोमोनस ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, अगर वो आपने उसने लिक कर लिया तो आपने ध्यान नहीं दिया या वॉश नहीं किया तो वो एक इन्फेक्शन दे सकते हैं। बट थोड़ा डिस्करेज करें अगर इफ़ ही इज़ लिकिंग योर फेस एंड तो जस्ट गो एंड वॉश, वो एक अफेक्शन का जेस्चर तो ज़रूर है लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप यू हैव टू बी केयरफुल, जस्ट वॉश इट विद गुड सोप आफ्टर दिस जेस्चर।
0: जी, आलोका जी का नोएडा से सवाल है, इन्होंने लिखा है इनके पास रैबिट है और उसकी देखभाल ये कैसे करें कि कहीं कोई दिक्कत उनको ना आए?
1: देखिए, रैबिट हमेशा पेयर में रखना चाहिए क्योंकि वो खुश रहते हैं, अगर आपने रखा है वो इतनी इंटरेक्शन नहीं है तो वो ज़्यादा खाते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो अगर आप उसको पेयर में रखेंगे तो खेलेंगे, उसको कभी केज में मत रखिए, घर में खेलने दीजिए और ऐसी कोई भी पेस्ट इंसेक्टिसाइड कोई स्प्रे ना करें घर में जहाँ रहते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाएं तो वो भी रेसिप्रोक्रेट करते हैं, दे आल्सो वो गिव अनकंडीशनल लव टू यू, वो आपको एक अच्छा कंपेनियन भी रहते हैं। और उसका ध्यान अगर अच्छा खाना खा रहा है और अपने वेटनरी डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहें फॉर एनी स्किन प्रॉब्लम और एनी डेफिशिएंसी तो आई थिंक दे लिव लॉन्गर।
2: मगर मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अधिकतर जैसे जो पालतू रैबिट हुआ है, कुछ भी हुआ, कैट भी हुआ, एक चीज़ बहुत मैंने अधिकतर घरों में देखा है वो जगह जगह पॉटी कर देती हैं, ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सफाई का ध्यान जरूर रखें।
1: बिल्कुल,
2: जो भी वो कहीं इस तरह कुछ भी अगर अपना मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं कहीं इसी जगह पर ना करें, अगर करते हैं
1: जनरली कैट के लिए वी रिकमेंड कैट लिटर बॉक्स होता है तो वो कैट इतनी ट्रेंड हो जाते हैं कि वहीं जाके करते हैं।
2: रैबिट,
1: इवन रैबिट भी अगर उनको एक ऐसा जगह बना दें आप, उसी ऐसे मैट हैं उसमें उसका यूरिन जहाँ लाइक न्यूज़पेपर बिछा दें तो अगर वो सोक कर लेता है थोड़ी देर बाद वो हील जस्ट गो देयर एंड हील पास टूल देयर, तो ऐसे रैबिट्स भी ट्रेंड, इवन द बर्ड्स दे गेट ट्रेंड, उनके लिए ऐसी ऐसी जगह बनाई हुई है नीचे वो पॉट रख देते हैं, वो वहीं जाके अपनी ड्रॉपिंग करते हैं। तो
2: ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है,
1: ट्रेनिंग की आवश्यकता, हाइजीन तो मेंटेन करना ही।
0: मनीषा जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है रांची से, ये लिख रही हैं कि ये 75 इयर्स ओल्ड हैं और बता रही हैं कि इनके पास एक बिल्ली है और इनको बुखार हुआ, उसके बाद उसको फीवर हो गया है, तो ये चाहती हैं कि उसको कैसे बचाया जाए, वो ज़्यादा दिक्कत में है इस समय।
1: देयर आर सम वायरल इन्फेक्शन जो ह्यूमन से अपने कैट्स को भी होती हैं या डॉग्स को भी होती हैं, अगर बेस्ट यही है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें और कैट को जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो देते रहें, जो उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहे तो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जल्दी होगी नहीं, बट जो वायरस है कई बार म्यूटेट कर जाता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने समस्याओं का समाधान जान लिया, मैं जानना चाहूँगी कि पशु चिकित्सकों का वन हेल्थ में क्या योगदान हो सकता है?
1: देखिए, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जैसे मेडिकोज हैं दे हैव देयर ओन इशू, पर वेटनेरियंस दे नो वेरी क्लोज टू द एनिमल्स विच डिजीज दे आर स्प्रेडिंग और कहाँ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी फैल रही है, तो उसमें जैसे कोरोना था तो कोरोना के साथ मेडिकोज के साथ मिलके वी कैन क्रिएट ए गुड वैक्सीन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, इवन डॉग्स के साथ लाइक उनके लिए वैक्सीन बना सकते हैं। और बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला एनवायरमेंटलिस्ट भी इसमें होने चाहिए, तो ऐसे एक इंटेग्रेटेड अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, हमारे कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कौन है और आपका सवाल क्या है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब आपको भी, आपको भी।
0: जी नमस्कार, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना।
3: मेरा नाम राजेंद्र है सर, मेरे को एक बार ये स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था उसको हाथ पे, तो पहले तो कई हॉस्पिटल गए, वो बोले ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं होता, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही मिलेगा
0: जी।
3: तो फिर वो क्या क्या अनइवन, तो वो फिर जो अभी जुगल किशोर जी जो सफदरजंग के बड़े हैं उन्होंने बोला है जो काटा हुआ डॉग का उसको टाके नहीं लगाने, तो मैं राम मनोहर लोहिया गया तो उन्होंने टाके लगा दिए थे इस पे, तो वो जुगल किशोर जी भी आए थे एक बार आपके शो में
0: जी। तो क्या जानना क्या चाहते हैं, मतलब ये जो

0: वो टांके आपको लगाए गए हैं वो हार्मफुल तो नहीं है, ये जानना चाहते हैं आप?
1: हाँ ये वहाँ उसमें कभी कभी हो जाता है, वो कहते हो ये इसका कोई एंटी इंजेक्शन इन्फेक्शन इंजेक्शन आता है, महंगा है वो, करना पड़े आपको।
0: जी
2: देखिए वो अगर बाइट बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो कई बार डॉक्टर्स वहाँ रिकमेंड करते हैं, पर 99.9% उसको बंद नहीं करना चाहिए जो भी रेबिट या कोई भी डॉग बाइट है, बिकॉज़ उसको 2 या 3 4 दिन के लिए खुला रखना है। और उसको आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 15 मिनट सोप से क्लीन करते रहें, रनिंग वाटर में करें, और इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं जो थोड़ा आपको बोला होगा एक्सपेंसिव है, वो जहाँ जख्म होता है उसके अंदर वो वैक्सीन लगाते हैं, एक नॉर्मल वैक्सीन लगाते हैं 0 डे 3rd डे 7th या 4 या 5 इंजेक्शन, वो डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है, वो बाइट कहाँ पे है और कितना डीप है वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टिच नहीं लगाना चाहिए, मे बी उस टाइम डॉक्टर साहब ने देखा होगा और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा हो तो इसलिए स्टिच लगाया होगा।
0: जी। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप भी? अच्छा
3: प्लीज।
0: सर आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं सभी समझ पा रहे हैं कि आज हम अपने भी सुरक्षा के लिए बातें कर रहे हैं। पशु पक्षियों से प्रेम बहुत ज़रूरी है लेकिन अपनी भी सुरक्षा ज़रूरी है, और कैसे अवेयर आप रह सकते हैं अपने बारे में, इस बारे में हमारे दो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, पशु पक्षी पालकों और किसानों को जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
3: जैसा मैंने बताया कि नियमित टीकाकरण बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए भी, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें पूरी तरह से, लोगों को जागरूक बनाएं, यदि कहीं भी पशुओं में कोई भी बीमारी यदि आपको लग रहा है असाधारण बीमारी हो रही है जो कि आपको लग रहा है कि जो उनको पहले कभी नहीं होती थी, या मनुष्य में भी कोई ऐसी बीमारी हो जो कि लग रहा है कि पहले कभी नहीं हुई थी, या ऐसे कोई नई लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आजकल नई नई बीमारी हो रही हैं तो उसमें तुरंत इसका निदान हो सके, ये आपको थोड़ा अपने तरफ से कोशिश करनी है।
0: जी, हमें खुद जागरूक रहना होगा, ये डॉक्टर साहब लगातार हमें बता रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए, बाकी बातें इसके बाद।

0: और चले। श्रोताओं, वर्ल्ड जूनोसिस डे पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर हैं 011-234-21080 और 011-234-21082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं जो कि लगातार आपके आ रहे हैं 9868107070 पर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार द्वारा जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
1: जी, हमारे देश के अंदर जूनोटिक डिजीज के रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग रूप से चल रहे हैं। जैसे एक समस्या मुख्य रूप से समस्या थी रेबीज, तो राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत समय से चल रहा है। और जैसे मैंने बताया 2022 से नेशनल वन हेल्थ पॉलिसी, इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तीनों एनवायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ प्लस एनिमल हेल्थ तीनों के ऊपर चल रही है। देन एक है इंटीग्रेटेड IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इसके अलावा विभिन्न पशुपालन मंत्रालय के अंदर भी पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पहले कि आपको प्रश्न था पशु पक्षी और पालकों या किसानों को रोकथाम के लिए क्या क्या जरूरी है, उसमें कहीं कहीं उसमें एक और चीज़ है कि जो जितने किसान या जो पशुओं के साथ में देखभाल जो या डेयरी फार्मिंग में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करें, तो क्योंकि जो डस्ट वहाँ से निकलती है वो जो मृत पशु हैं उनको सही तरह से कैसे निपटाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसमें और नियमित टीकाकरण जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। जी,
0: बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें भी पशु देखा जाता है कि सड़क पर बहुत बुरी तरह से पड़े हुए होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम चेन हैं एक और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब आपसे मेरा कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अन्य उभरती हुई जूनोटिक बीमारियों पर वर्तमान स्थिति क्या है इस समय?
1: देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और जितनी जूनोटिक बीमारियाँ आजकल जब भी होती हैं तो नई बीमारियाँ होती हैं, अधिकतर आउटब्रेक के रूप में होती हैं, मतलब अचानक से उभर के कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो समय समय पर आउटब्रेक के रूप में सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं नियमित निगरानी, पोल्ट्री फार्म जो आपके मुर्गा पालन या पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बायोसिक्योरिटी और रैपिड एक्शन एक्टिविटी कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनको ही मास्क पहन के या कहीं अपने दस्ताने वगैरह पहन के उसको प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं इस

0: ये इस तरह की जगह जो जगह हैं बर्ड्स वगैरह इन सब ऐसी जगहों पे काफ़ी अचानक से बहुत बहुत जल्दी आउटब्रेक होता है इस तरह की बीमारी में।
1: जी
0: जी
1: हमारे पास मैसेज आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने सवाल किया है कि पिजन्स के अलावा क्या अन्य जो बर्ड्स हैं उनसे भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है?
2: या उनका ड्रॉपिंग से हो सकता है, तो इसलिए अगर आप हाइजीन रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा छोटे एरिया में ज़्यादा बर्ड नहीं रखें, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए।
1: जी
2: तो आप पैरट्स जो भी जो रिकमेंड हमारे कंट्री में अलाउड हैं वो रखें, एग्जॉटिक एनिमल्स रख सकते हैं, पर जो हमारे इंडियन पैरट्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू कीप एज ए पेट, तो वो इलीगल है, वो नहीं आप रखें। बाकी आपने जो और एग्जॉटिक एनिमल बर्ड्स रखे हैं तो उनका जो केजेस हैं उनको अच्छी तरह क्लीन करते रहें, उनकी ड्रॉपिंग्स के लिए आजकल नए नए केज आए हैं, वो नीचे ट्रे होता है वो नीचे गिर जाती हैं, उसको आप क्लीन करते रहें। बाकी जितना हाइजीन रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो ऐसी कोई इन्फेक्शन नहीं होती ज़्यादा। और तो आई
1: जी
2: थिंक कीप ऑन लविंग योर बर्ड्स।
1: जी डॉक्टर साहब, जूनेटिक रोगों के बारे में आम जनता में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? क्योंकि सही अगर कोई मशवरा दे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ
2: भ्रांतियां तो बहुत है
1: भ्रांतियां
2: हमारे कल्चर, एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा है कि वी आर वेरी क्लोज टू द एनिमल, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। तो भ्रांत को बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो उसको ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो
1: ओह
2: वो
1: माय
2: लगता
1: गॉड।
2: है वो मेरे कोई अपशगुन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता कभी भी। वो एनिमल है, वो जगह उसको भी वो बिलोंग करता है, वो भी कहाँ रोम कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपको ऐसे बिल्ली को तो रास्ता काट गई तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो एक ये अंधविश्वास है, उसको आप दूर रखें। और कभी डॉग आपको स्क्रैच कर ले तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि इससे रेबीज़ हो जाएगी, वैसा रेबीज़ नहीं होती। और अब कौआ बोलने लगे तो बोले घर में कोई गेस्ट आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एनिमल्स के
1: जी
2: साथ, बिकॉज हम हमारा सोसाइटी ऐसी है, वी लव एनिमल्स एंड वी शुड कीप ऑन लविंग अप आर एनिमल्स ऑन आउटसाइड एंड इनसाइड द हाउस।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, सवाल सिर्फ लिखा है सर, जो डॉग के काटने से रेबीज होता है उसका 10-15 साल पहले काटा हुआ, मतलब ये जानना चाहते हैं कि अगर 10-15 साल पहले काटा हुआ है तो भी क्या आगे चल के रेबीज हो सकती है?
2: ऐसा कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे डॉग बाइट को अच्छी तरह आपने एड्रेस कर लिया है, अपने डॉक्टर से बात करके प्रोफाइल जो थेराप्यूटिक डोजेज ले ली हैं, तो मुझे नहीं लगता वो बाद में होता है। लेकिन एक बहम है, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है कि मेरे को 10 साल पहले डॉग ने काटा था तो अब तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप आपकी इम्यूनिटी बेटर है और आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया था, और एक बात यह है कि हर डॉग बाइट रेबीट बाइट नहीं होती है, तो हर डॉग रेबीट नहीं होता है, तो इसलिए आप डरे नहीं। और एनिमल को इसलिए नहीं मारे डॉग को कि वो रेबीड है, तो रेबीड नहीं होता वो एनिमल, उसकी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी भी होती है, वो सदियों से हमारे पास रह रहा है, तो वो उनकी जीन्स जो हैं डीएनए आरएनए उनके बहुत स्टडी होते हैं, दे उनको अगर एक्सपोजर नहीं होता तो दे वोंट गेट रेबीज। लेकिन अगर आपने ठीक टाइम पे वैक्सीनेशन करवा लिया और ध्यान रखा है और घर के अंदर जो रखा है उसको वैक्सीनेशन करके रखा है, तो आई थिंक यू शुड वरी अबाउट दिस।
1: जी डॉक्टर
0: मैं
1: साहब,
0: इस विषय पर बस एक एक चीज़ थोड़ा सा करना
2: श्योर
0: चाहता
2: आप
0: हूँ।
2: बताएं।
0: यदि कोई भी एनिमल यदि काटता है, यदि पालतू है, तो कम से कम उसको ऑब्जर्व करें 10 दिन के लिए। यदि घर के बाहर के किसी कुत्ते ने काटा
2: बिल्कुल
0: है आपको, तो उसे 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करें, क्योंकि कभी भी जिस कुत्ते ने काटा है, यदि उसको रेबीज है, तो यूजुअली 7-10 दिन के अंदर वो डॉग की डेथ हो जाती है।
2: बिल्कुल
0: तो इसीलिए किसी भी यदि कोई कुत्ता यदि काटता है तो उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करें। यदि वो कुत्ता अगर सड़क वाला कुत्ता है या स्ट्रीट डॉग है, तो उस केस में वैक्सीनेशन कराएं तो अच्छा, क्योंकि ध्यान रखिए रेबीज जो है 100% फेटल डिजीज है, तो उसमें रेबीज यदि एक बार हो गई तो फिर ऊपर वाला मालिक
1: जी।
0: है।
1: लेकिन श्रोताओं, यहाँ पर आपको डराने का उद्देश्य हमारा
0: जी
1: बिल्कुल नहीं है, हम
2: बिल्कुल
1: चाहते हैं कि सिर्फ आप जागरूक रहें क्योंकि पशु पक्षी हमारे साथ रहें, ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण ये बताया जाता है कि हमारी जो स्ट्रेस होती है वो भी रिलीज होती है जब हम इनके साथ होते हैं, तो खुश रहिए उनके साथ और पूरी तरह से सुरक्षित भी कैसे रहें इस बारे में आज हम चर्चा करें। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि पशु चिकित्सक और मानव चिकित्सकों के बीच समन्वय क्यों ज़रूरी है?
2: वो जैसे हमने पहले बताया कि वो इंटेग्रेटेड अप्रोच रहेगा ना, एक टेबल पे सब बैठे हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या कहाँ आउटब्रेक है, कहाँ किस एंगल से आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आई थिंक वो इम्प्लीमेंटेशन

0: बहुत फास्ट होगी, वी कैन स्टॉप द आउटब्रेक, और जो आने वाली बीमारियां हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हर ट्रॉपिकल कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट वायरस होते हैं, वो कई बार म्यूटेट करते हैं, तो वो अगर रेगुलर रिसर्च और उसके ऊपर काम होता रहेगा तो वी कैन कीप आर कम्युनिटी वेरी सेफ।
1: जी डॉक्टर साहब, हम उस मोड पर आ चुके हैं जहां पर हमें अपना जो चर्चा हम कर रहे हैं उसको विराम देना होगा, तो आप दोनों से चलते चलते संदेश जाना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, इसमें हमने डराया नहीं आपको, लेकिन हमने आपको अवेयर किया है कि ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान से डॉग को हो सकती हैं, एनिमल्स को हो सकती हैं, एनिमल से इंसान को हो सकती हैं। तो अगर आप हाइजीन रखें, सफाई रखें, अपने आसपास घरों में सफाई रखेंगे तो आई थिंक ये बीमारियां नहीं होगी। थोड़ा अवेयर रहेंगे तो थोड़ी इनिशियल स्टेज में ही आप उसको पकड़ सकेंगे, तो हमेशा अवेयर रहिए।
1: जी,
2: मेरी तरफ से संदेश ये है कि विश्व जूनोसिस दिवस पे कि जानवरों से प्यार करें लेकिन सावधानी बरतें।
1: जी,
2: तो पालतू जानवरों को जो अगर ये आपके पास में है तो उनका टीकाकरण अवश्य कराएं, स्वच्छता रखें जानवरों के पास भी अपने आसपास भी, किसी भी असामान्य बीमारी की सूचना अवश्य दें, जागरूकता स्कूलों गाँवों सोशल मीडिया के जरिए फैलाएं जितना हो सके, जो भी यदि दूध पिएं तो उसको हमेशा उबाल कर पिएं, कच्चा मांस नहीं खाएं, पुराना मांस नहीं खाएं, तो ये सब चीज़ों थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सफाई का सब चीज़ों ध्यान रखेंगे।
0: लेकिन इंसान को भी अगर प्यार करें तो मुझे सावधान रहें।
1: जी, आपने जागरूक किया, और श्रोताओं आपको बता दें कि वर्ल्ड जूनोसिस डे पर आज हमने विशेष चर्चा की है, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप बहुत गौर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहें और लाभान्वित होते रहें। अब चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद थे। आप थे डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और डॉक्टर आरटी शर्मा जी, वेटरनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एक मौका देने के लिए, लोगों के साथ में एक इंटरेक्शन के लिए।
0: थैंक यू
1: जी, शुक्रिया।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नया सी ज्यादा बेटर है।
1: नहीं, मैं ये बोला ये नया शायर तो नहीं, जब तो देखा तुझको मुझको शायरी याद है, बहुत
0: अच्छा
1: गर्म लगा
0: एक गीत सिगा, मैंने लगा तुसी शायद कोई लोरी नू इस तरीके ना सुनाया है कि जेड़ा बच्चा सो रहा हो भी उठ जाएगा। अच्छा एक गीत ये वाला सिगा, ओके ओके ठीक है ठीक है। तो नहीं, बहुत बढ़िया कोशिश तुसी की थी, पर मुंह खोल के नहीं, मुंह बंद करके सुनाना सिगा तो ज्यादा बढ़िया होता।
1: चलो ठीक
0: ठीक है
1: है,
0: जी,
1: मैं
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, सन कॉल करने वास्ते थैंक यू जी। चंगा जी,
1: थैंक
0: चंगा जी। ओ लो जी, इन्होंने गीत तो सुनाया पर गीत नहीं पता चलिया खेड़ा सीगा। हुण मैं अपनी फरमाइश का गीत, मैं पहले क्या सीगा जे तुहाडा गीत नहीं पता चलेगा तो मैं अपनी मर्जी का गीत चलाऊंगी। हुण मैं अपनी मर्जी का गीत चलान जा रही हाँ। प्रोग्राम चल रहा हैलो जलंधर, तो नंबर है 0182-43-174, 01812342174 ये नंबर है जी। इस नंबर से तुसी डायल करके अपनी गाने की फरमाइश पूरी कर सकते हो। हुण मैं नहीं दसना कि शर्त से, तुसी चंगी तरीके ना जानते हो कि शर्त के नाल तुसी अपनी गाने की फरमाइश करनी है जी।
2: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਪੌਂਸਰਡ ਜਾਂ ਗੈਟਸ ਮੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਹੈ।

0: वाह जी वाह, मैं क्या
1: जी
0: पहले मैं तालियां मारदा तुहाडे लई थोड़ियां जी ना, वो जिहड़ी बांदियां वी आ, मैनूं पता लग गया तुसीं कहिड़े गाने दी फरमाइश कीती है। तुसीं कीती है तेरे चेहरे में वो जादू है
1: हाँ जी,
0: जी,
1: हाँ जी मैडम जी।
0: बहुत सोहना तुसीं गुनगुनाया ते सानूं गैस भी सही हो गया कि तुसीं कहिड़े गीत दी फरमाइश कीती सीगी। कितनी देर लगी प्रैक्टिस नूं, मतलब कदों ते प्रैक्टिस कर रहे सी?
1: मैडम जी एक काम करते पे से नाल ही 5-10 मिनट नाल ही ना गाने इदा दा चूज कर लिया सी जिहदी प्रैक्टिस सानू सौखी लगे।
0: हाँ ये तो मैं हिंट भी देता सी ना, ताही तो मैं कह रही सी कि फटाफट इस गीत की प्रैक्टिस करो ताकि वह गुनगुनाया जा सके वधिया तरीके नाल।
1: हाँ जी
0: नहीं बहुत वधिया तुसीं गुनगुनाया ते तुहाडे गाने दी फरमाइश तुहाडी दोस्त सुर भी जरूर पूरा
1: मैडम
0: करेगी।
1: मैडम जी,
0: हाँ
1: मैडम जी
0: जी
1: असीं 2 लाइनां बोल सकते हैं?
0: नहीं जी, एक ही बोल सकता है। उन्होंने
1: हाँ
0: को
1: जी,
0: फोन ट्राई कर लो दोबारा,
1: नहीं, मैं कहा 2 लाइनां बोल सकते हैं असीं?
0: दो लाइना बोलनी है
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: का दिया गाने दिया
1: मैसेज दिया मैडम जी, थोड़े जी
0: मैसेज, कहना मैसेज है
1: मैसेज। मैडम जी देखो जी, बी गुड, अच्छे बनो,
0: अच्छा
1: बी हैप्पी,
0: जी
1: खुश रहो,
0: जी
1: ओनली वन, हमेशा एक के साथ जुड़ो। मैडम जी हमेशा FM रेनबो के साथ जुड़ो।
0: हाँ जी वाह जी वाह, क्या बात है जी जी जुड़े भी रहना चाहिए, बहुत चंगी गल है ते बहुत अच्छा
1: हाँ जी,
0: मैसेज
1: हाँ जी
0: तुसी
1: मैडम
0: दिता,
1: जी,
0: खुश रहना चाहिए। असं भी यही दुआ करते हैं तुसी भी हमेशा खुश रहो ते साढ़े नाल हमेशा तुसी बने रहो, FM रेनबो दे नाल हमेशा बने रहो जी।
1: हाँ जी, थैंक यू जी।
0: थैंक यू सो मच जी सानू कॉल करने वास्ते मोंटी जी, थैंक यू सो मच। लो जी ये तो साढ़े कॉलर ने बड़ी अच्छे तरीके दे नाल गुनगुना के सानू गाने की फरमाइश कर दी है। हुण वारी है जी अगले कॉलर्स की कि अगले कॉलर्स किन्नी प्रैक्टिस करके साढ़े कोल आउंदे ने ते किस तरीके का गीत जिहड़ा है वह गुनगुना के सानू सुनांदे ने। लो जी इंजॉय करो ये प्यारा जिहा गीत।

0: मैडम
1: राजकुमार जी, नहीं होली गाल क्यों कर रहे हो?
0: बस मैं तो नाल प्रोग्राम एंजॉय कर रहे नाल रेस्ट हो रही थी
1: अच्छा, मतलब पूरे
0: फोन ला
1: आराम
0: दी।
1: दे नाल तुसी एंजॉय कर रहे हो, तां थोड़ा धीमे धीमे बोलते पे हो, हौली हौली बोलते पे हो।
0: जी मैडम
1: जी, ते फिर गीत जेड़ा सुनना है ना, ओनू तुसी उन गुनगुना के सानू सुनाते हो।
0: ठीक है मैडम।
1: जी,
0: गुड डे है मिता नेचर
1: गा के
0: इंडिया
1: नहीं,
0: तमानी जाना
1: गुनगुना
0: की
1: के
0: गुनगुना आगे कितना ही
1: इदा, जिदा मैं हुन केड़ा गे, जिदा हुनी गाना लगा सी तेरे चेहरे में, तो है ना इदा करके।
0: अच्छा
1: हाँ जी, प्रोग्राम तुसी सुनदे पे, फिर तुहानू पता क्यों नहीं हैगा, पहला मैनू ए दसो।
0: मैडम मैं लाया ही तो होनी है
1: अच्छा, फड़े गए ना, देखिया। अच्छा, हुन तुसी
0: चाहे
1: गुनगुना
0: कॉलेज का
1: के,
0: तो प्रोग्राम मैं तो ला लेने हैं
1: अच्छा, ते नाले तुहाडा
0: तो
1: फोन भी लग
0: नाल
1: गया,
0: एक बैल भी चल के नाल फोन लग गया थे।
1: देख लो किस्मत तुहाडी चंगी है। पर एक गाना जेहड़ा पूरा होएगा कि नहीं, फरमाइश पूरी, ये नहीं पता। हूँ तुसी मैनू गुनगुना के गाना दसो, केड़ा सुनना है?
0: गाना हुण तुसी सुना दो इदां ही
1: लै, इदा किदा
0: क्योंकि
1: लगे, मैं ये
0: क्योंकि
1: टास्क है,
0: मैं हाँ जी
1: ये टास्क है। देखो जेहड़ा गीत तुसी गा रहे सी ना, ओनू बस गुनगुनाना ही है, मुंह बंद करके।
0: नहीं भाई कोई
1: मैनू लगा कोई शहनाई बजन लगी
0: नहीं
1: है। देख लो की पता तुहाडे को अंदरला टैलेंट बाहर आ जाए निकल के, आज पता भी नहीं ना।
0: मुश्किल है।
1: मुश्किल है, चलो कोई गल नहीं, जे फिर मुश्किल है थोड़ा जहा इधरों भी। ठीक है जी, तो थैंक यू जी कॉल करने वास्ते, प्रैक्टिस करते रहा करो, एक दिन जरूर
0: ओके
1: सफल होवोगे। शुक्रिया जी। दिलो जी, सी साडे कॉलर जिन्हां ने गाने नूं गुनगुनाया बट गाना सानूं समझ नहीं आया, चलो कोई गल नहीं जी, हुंदा रहिंदा है जी, यही तो कोशिश है, नहीं तां ही तां मैं कह रही हां, मैं तां ही तां एग्जांपल भी दित्ते सीगे कि किस तरीके नाल तुसीं गुनगुना के मैनूं सुनाना है जी। अगले कॉलर दे कोल जावांगे, हुण देखांगे कि ओह किस तरीके नाल अपने गाने दी फरमाइश जिहड़ी आ पूरी करवाउंदे ने जी। सो नंबर अनाउंस कर देनी आ, 0181 तां ही बता ली, 174 01812342174। ते जिहड़े लिसनर साडे नाल इस टाइम जुड़े ने, देखो वक्त थोड़ा जिहा रह गया पर फिर भी फरमाइश जरूर पूरी हो सकदी है, जिहड़े हुणे जुड़े ने उहनां नूं इस गल दा ध्यान जरूर रखना पैणा कि गाने नूं गुनगुना के सुनाना पैणा है, बिना गाए और बिना किसी सिंगर का नाम दसे, ना बिना मूवी दसे, ताकि मैं गैस ला सका तो उसे केड़ा गीत सुनना है। लो जी, इस गीत तो बाद अगले कॉलर के नाल जुड़ते हैं।

0: जी दोस्तों, फिर सेगमेंट शुरू हो गया है तो फिर सवाल दी लड़ी भी शुरू हो जाएगी।
1: हाँ जी जी, शुरू होने जा रही है लड़ी साढ़े क्वेश्चंस की। तो तुसी अपना जो मोबाइल है ना, अपने हाथों में फड़ लो ते जल्दी तो जल्दी सानू कॉल करनी है ते साडे नाल गल्लां बातां मारनियां ने,
0: क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। ते जे बारिश हो रही है ते फिर बारिश दे जुड़े सवाल ही असीं तुहाडे लई लैके आवांगे जो बॉलीवुड दे विचों असीं चुन चुन के तुहाडे लई लब्भे आ।
1: बिल्कुल, तो अज साडा होएगा फिल्मी नंबर 1 मानसून स्पेशल।
0: ते बस फिर मानसून स्पेशल एंजॉय करोगी जी तुसी साडे नाल, मेरे नाल आज हर आज शिवम थे
1: आज हटनी थे ना
0: इसलिए भी मैं ही बोल देना हटनी तो बोल नहीं रही मेरे नाल।
2: डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
0: जी प्यार तो डरिए ना डरिए सी, हरनीत तो जरूर डर रहे हैं। तो हरनीत मुझे लगता है सवाल लेके हाजिर है जी।
1: हाँ जी, सवाल लेके आप हाजिर जरूर हो गए हैं। तो तुसी सुनो साडा पहला सवाल। सवाल साडा ये है कि श्री 420 दे उस आइकॉनिक रेन सॉन्ग का नाम की है जिदे विच राज कपूर ते नरगिस इकट्ठे नजर आते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरीके ना कंटिन्यू रहेगा। हुण तुसी पूरे 6वीं ते सुनोगे परदेशी खबरां साडे प्राइमरी चैनल तो ते जाना किते नहीं है जी, क्योंकि लव यू जिंदगी प्रोग्राम विच तुहाडी यार जे दोस्त सुरभी बड़ी सारियां गल्लां लैके आएगी, एक कहानी भी तुहाडे नाल शेयर करनी है जी, तुहानूं इंस्पायर भी तो करना है। तो सो लव यू जिंदगी प्रोग्राम नूं आपां कंटिन्यू रखांगे। हुण तुसी सुनोगे साडे दिल्ली चैनल तो परदेशी खबरां।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 6:20 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसदा?
2: गुड्डी दी फीस दा।
3: दिखा 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम। तनखा एडवांस च भेजी है।
4: RBI कहंदा है
5: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
6: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी लहर सुधारा डिजिटाइजेशन आते पेशेवर प्रबंधन राही पसार दे एक नवे पड़ाव विच दाखल हो रही है। देश अज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म वरीगंढ से उन्होंने नमन कर रहा है। पंजाब ते चंडीगढ़ विच भी इस संबंधी प्रोग्राम आयोजित। 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबलियां 2024-25 विच पंजाब के 2 ते हरियाणा के 1 विद्यक अदारे नूं जेतू ऐलानिया गया है। पंजाब सरकार वल्लों ऑनलाइन NRI मिलनी 8 जुलाई नूं ते भारत दी मर्दां दी अंडर 18 हॉकी टीम लई 11 दिनां दा राष्ट्रीय कोचिंग कैंप चंडीगढ़ दे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस विच अज तों 17 जुलाई तक। हुण खबरां विस्थार नाल। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
7: हमने कृषि ऋण डेयरी उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण उत्पादन एक्सपोर्ट जैविक उत्पादन परंपरागत बीजों का उत्पादन ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण डिजिटल सेवाएं बैंकिंग मोबिलिटी लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
6: गृह मंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि बीज उत्पादन दे खेतर विच स्थापित राष्ट्रीय सहकारी कमेटी आने वाले 3 सालां विच भारत दे सब तो वड्डे गैर सरकारी बीज उत्पादन संगठन वजो उभरेगी। उन्हां अगे कहा कि इस राही 3 उद्देशां ते काम किया जा रहा है जिस विच किसानां नूं शुद्ध अते मिलावट मुक्त बीज प्रदान करना ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ

जी एंजॉय कर रहे प्रोग्राम सलाम मिक्स ते समा चुके रात के 8:41 ते मैनू लगता कि बहुत सारिया जिहड़ियां गल्लां ने मेरे कोल ते हैगे नहीं शायद तुहाडे कोल भी हुंदियां तुसीं सानूं वैसे वट्सअप कर सकते सी अगर तुहाडे कोल गल्लां ने मैं तुहाडियां गल्लां भी पढ़ के तुहानूं सुना दिंदा ते चलो खैर अगे ना हुण आपां इक तुहानूं गल समझा रहे हैं कि जिहड़ा तुसीं हैरान हो जाओगे कि बई अच्छा जी ये क्या चल रहा है सो गल इदां कि चाइना दे विच जिदा इंसान जिहड़े ने पढ़ाए जाते हैं इदां ही रोबोट्स नूं भी हुण पढ़ाया जा रहा है जी हाँ रोबोट्स नूं खास तरीके की ट्रेनिंग जिहड़ी है दित्ती जा रही है ना स्कूलों दे विच रोबोट नूं टैक्निकल स्किल्स नर्सिंग स्किल आर्ट्स स्पोर्ट्स जैसे अलग अलग प्रोग्राम जिहड़े ने वह सिखाए जा रहे हैं नो डाउट उन्हां दी प्रोग्रामिंग जिहड़ी है नैचुरली उन्हां अंदर पा दित्ती जाती है सब कुछ दस्या जाता है बट फिर भी जदों करन दी गल आउंदी है तो काफ़ी बार जिहड़ी ह्यूमन बॉडी कर सकती है और रोबोट नहीं कर सकते होंगे तो रोबोट्स नूं देखण वास्ते कि रोबोट नूं कित्थे प्रॉब्लम आ रही बेसिकली उन्हां नूं सिखांदे सिखांदे भी बस आही इंसान जिहड़े ने सिख रहे ने कि अच्छा जदों आह चीज़ उन्हें चुकी तो किद्दां उन्हूं की प्रॉब्लम आई किद्दां उन्हां दी बॉडी दे विच उस चीज़ नूं नहीं चुक पाया या नहीं उठ पाया या किद्दां उन्हें पैर रखिया किद्दां उन्हें हाथ हिलाया हर चीज़ नूं चंगी तरह क्लोजली ऑबजर्व करने लई एक रोबोट स्कूल जिहड़े ने खोल रहे ने जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड चर्चावां दा हिस्सा जिहड़ा ने उस वक्त बन चुके ने ठीक है जी सो एक होर हुण अगली खबर वल वधदे आ क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ हुण चाइना विच नहीं है जनाब इंडिया विच भी है जी हाँ इंडिया दे आंध्र प्रदेश दे ईस्ट गोदावरी जिले दे अर्थमुरू पिंड दे विच होया कि 65 साल दे जिहड़े मकैनिक सट्टी शिवा नारायण जिहड़े रेड्डी ने उन्होंने अपनी पत्नी उन्हें पत्नी ना प्रॉब्लम सी पौड़ियां चढ़न दी सो उन्होंने वह पौड़ियां की दिक्कत नूं दूर करन दी लई की कीता उन्होंने अपने घर दे विच खुद का ही एक एक्सलेटर जिहड़ा है वह बना लिया जी हाँ एक्सलेटर इन्ना खूबसूरत बनाया कि बई हुण वह मतलब बड़े आराम दे नाल ਤਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਸੱਤਿਆਬੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕਲੇਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੀਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

नमस्कार, वंस अगेन सत श्री अकाल, वंस अगेन गुड इवनिंग, वंस अगेन आदा, वंस अगेन एंड ऑलवेज जिंदगी जिंदाबाद। रात दे 9:03 हो चुके ने, एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी दिल चाहता है। एंड दिल चाहता है दे विच थोड़ा अपना दोस्त मोहित रुबल थोड़ा इंतजार कर रहा है, वेलकम करता है, सो दैट कि तुसी प्यारियां प्यारियां फरमाइशां जिहड़ियां ने प्रोग्राम दे विच भेजो। तो अज एक नवा कीर्तिमान, नवा रिकॉर्ड जिहड़ा है असी बनाउने आ कि भई अज किन्ने मैसेज जिहड़े ने साढ़े प्रोग्राम दे विच पहुँचते हैं। चलो जी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम दे विच पहले मैसेज की। पहला सानू मैसेज आया लिखिया जनकपुरी महाराष्ट्र जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो ते मैसेज कर रहे हैं गुड ईवनिंग एक्सपेक्टेड होस्ट जी, और फरमाइश कर रहे हैं लाल छिड़ी मैदान खड़ी गाना सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज है जी खुशनुमा गीत गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली तो, थैंक यू जी। अगला मैसेज गाँव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढोकिया, परमीला ढोकिया, ज्योति शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, साइना, विष्णु, दोहती, ईवा, धारनिया। फिल्म नाम आवाज़ पंकज उदास, बोल चिट्ठी आई है। ठीक है जी, फिल्म नाम चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, वैसे चिट्ठी तो नहीं, आपका प्यारा सा मैसेज आया है। सो ढूंढते हैं फिल्म का नाम, नाम नाम, और ये रहा नाम, नाम नाम, ओके तू कल चला जाएगा तो, अच्छा ये अलग गाना है, तो चिट्ठी आई है गाना ये रहा। ठीक है जी, और ये फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं आपकी, थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज आया गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, गीत के बोल चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ओ हाउ स्वीट। अगला मैसेज नमस्कार जी, फिल्म मुगले आजम की तेरी महफिल में किस्मत, मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, थैंक यू जी। अगला मैसेज नमस्कार जी, फिल्म माया की तस्वीर तेरे दिल में।

0: इलाहाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा। ठीक है जी, फिलहाल प्रोग्राम में ये जो फरमाइश हमें पहुंची, हमारे पास नाम फिल्म की चिट्ठी आई है। सो देखते हैं कौन कौन से दोस्त जो है हमें चिट्ठी यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज जो है, ऑनलाइन चिट्ठी जो है भेजते हैं। इंतज़ार करेंगे, आप भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे हम अपनी फरमाइश भेजिए किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्मी गीत की। हमारा नंबर है 9855101027
1: यानी कि 9855 10 10 27।

जी, बहुत सारी चिट्ठियां, यानी कि डिजिटल चिट्ठियां जो हैं मेरे पास पहुंच रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बहुत सारा। अगे वद्दियां जी, अगे सानू जो मैसेज आया है, किसी ने सानू 8:03 ते ही मैसेज भेज दिता, अजे रात दे 9 भी नहीं बजन दिते। लिखिया, प्लीज आज तो रिक्वेस्ट पूरी कर दो, प्लीज। गुड इवनिंग टू आर जे FM रोहित रुबल, सॉरी FM रेनबो जलंधर सॉन्ग, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर, फिल्म जिद्दी, मन्ना डियोर, गीता दत्त, म्यूजिक सचिन देव बर्मन, हम्बल रिक्वेस्ट बाय सूर्य चौहान, तहसील ठेयोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। अरे हिमाचल वालों की भड़का जी, के बात कर दी भड़का जी, ऐसे मत बोलो, फरमाइश तो पूरी कर ही देंगे। हैं जिद्दी हो आप, सॉरी जिद्दी फिल्म का नाम है, तो ठीक है जी। बड़का जी, हम तो हिमाचल से ही आए हैं, तो सीधा आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। कौन गाना बोल दिया आपने, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, कभी बना डी डी, तेरे गाना कहाँ गया? अरे भाई, फिल्म के गाने ही बड़े ज़्यादा हैं। ओके, ये गाना गाया है, ये रहा गीता दत्त और मन्ना डे, जरूर हो गया बड़का जी गाना, टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मैसेज आया, फिल्म सत्य सत्ता बोल झुका के सर को बोल मैडम, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। हाई, अगला मैसेज आया, गुड इवनिंग मोहित वीर जी, किवें हो? मैं बहुत वधिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाल चाल पूछने लई। सोनू रवि राज, गुलशन लक्की, बलदेव नगर, जलंधर सिटी तो, मूवी हम है राही प्यार के ट्रैक, यूं ही कट जाएगा सफर। अगला मैसेज आया, दिल चाहता है शो एनी सॉन्ग, टू रीड आउट माई नेम प्लीज आरजे, फ्रॉम नेम हितेंद्र दास, आसाम से।

0: बिल्कुल जी, थैंक यू। कार्यक्रम दिल चाहता है के प्रस्तुतकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, हार्दिक अभिनंदन। फिल्म सूरज, आवाज मोहम्मद रफी, गीत के बोल भरपूर बरसाओ मोहित है। और अगर मैसेज भेजा है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, धन्यवाद, थैंक यू जी। करणवीर हाउस पुछो कैंचियाँ बठिंडा पंजाब तो नमस्कार जी। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह एकम, दमन अभिजोत, किसी भी गीत में शामिल किया जाए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज, सौ प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। गीत दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, फिल्म आखिर क्यों। आवाज़ लता मंगेशकर, अमित कुमार, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्डा, अलका मिड्ढा। अगला मैसेज, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जैव सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शिवचंद्र बजाज, साहेब बजाज, बिट्टा बजाज। देखिए ऐसा है कि जो मैसेज पढ़ चुका हूँ मैं ठीक हूँ, जो मैसेज नए आ रहे हैं छोटी सी बात हमें बता दीजिए कि क्या आपके इलाके में कल और आज बारिश हुई। थोड़ा सा बस ये जानने के लिए कि लोग कितने एक आँखें खोल कर और कान इधर कर कर प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बाकी आप सुनने जा रहे हैं फिल्म सिद्धि 1964 में बनी,
1: मैं तेरे प्यार में,
0: गीत के बोल है मैं तेरा प्यार में।
1: मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर,

अब ऐसा है बड़का जी, 8:09 पर फरमाइश भेज के आपने अगर पूरी करवा ली है, ठीक है। कौन थे ये दोस्त? हाँ, ये थे सूर चौहान, तहसील डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से। तो आप हमें मैसेज कंफर्म करके भेजिए कि हाँ भैया आपने ये गाना सुना है, पता तो चले भाई साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं, फरमाइश भेजी घंटे पहले हैं। अगला मैसेज है, दिल चाहता है मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, फिल्म हीरा मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरकल, रतनमाला आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरकल, धन्यवाद। अगला मैसेज है, नमस्कार जी हाजी अभिनंदन, रेनबो जलंधर के लिए मोहब्बतें, दुआएं और नेक तमन्नाएं। गीत ये आपने क्या कह दिया? अरे हमने क्या किया, हम तो बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। स्वर अचार भोसले, मोहम्मद रफ़ी, फिल्म खुदा कसम, चंडीगढ़, सतीश अनेचा, बिमला अनेचा, धन्यवाद। अगले मैसेज, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश, फिल्म मंजिल और युद्ध कड़वासरा, गीत रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम।

से कैसे लगी है। रिमझिम गिर सावन, सुलग सुलग है ये मन, डरे डरे डरे। ये फिल्म हमें क्यों नहीं मिली, इतना सुंदर गाना है। गाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। रोइम झिम और फिर है गिरे, ठीक है, और ये गाना मिल गया। ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आगे मैसेज है, दिल चाहता है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जय जय आकाशवाणी प्रस्तुत करता जी सुप्रीम। फिल्म एक फूल दो माली, गायक मोहम्मद रफ़ी जी, बोल ओ नन्हे से फरिश्ते, चक 15 PS, जिला श्री गंगानगर राजस्थान, तोंजी, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्श पाल सिंह, वैनकूवर कनेडा तो रॉबिन सिंह। थैंक यू जी। अगले में सी नरेश कुमार पॉल, त्रिपुरा पॉल परिवार, विलेज संगवाल, जलंधर फिल्म अक्सर, द गीत झलक दिखला जा रहे। थैंक यू जी। अगले में सी फिल्म पड़ोसन सॉन्ग, एक सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भरत मक्कड़, मन्नत मक्कड़, कमल सानी, पींगा वाला च्यों को कराया जलंधर तो। अगले में सी करणवीर सिंह पॉल, त्रिपुरा पॉल परिवार, सराबा नगर जलंधर तो, फिल्म ब्लैक मेल, द गीत पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला एक होर मैसेज है, सत श्री अकाल जी, दिल चाहता है विच मोहित रुबल जी, बलविंदर सरां, गुणतास, रसनदीप, मनिंदर सरां, पिंड मोर

0: को बुला जाओगे, मुझको अगर बुला जाओगे तुम, दिल का खिलौना है टूटे, अखियाँ बोल हौले तेरे को, सफर को करे जीवन में। अरे यार इस गाने के बोल क्या हैं, एग्जैक्टली बोल क्या हैं इस गाने के, उस हिसाब से गाना ढूंढना पड़ेगा मेरे को। इन्होंने लिखा है गम उठाने के लिए, गम उठाने के लिए। चलो जी ऐसा है कि हम ना वेट नहीं करते, गाने को होल्ड कर लेते हैं और फिर अगले जो हमें बीच में समय मिलेगा ये गाना जो हमें ढूंढ कर इनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो अल दोस्त जो हमें मैसेज भेज रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अगला मैसेज, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। आदरणीय प्रसारक जी, आप हमने किसी भी फरमाइश में शामिल करें आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां, आज़ाद नगर, लक्ष्य हरिद्वार से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। किसी भी गीत के साथ शामिल करें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया हमें मैसेज भेजने के लिए। अगले मैसेज, स्वर्ण सिंह पिंड दोले वाला जिला मोगा, तो गीत तू प्यार है किसी और का फिल्म दिल है के मानता नहीं। अगला मैसेज आया है, बहुत लंबा मैसेज है हमें, लिखा गीत सिमटी हुई है गड़ियां, गायक ये संगीत गीतकार फिल्म कलाकार और फरमाइश भेजने वाले हैं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुसा, भाई राजकुमार और सुदामा नगर खड़वा से लक्ष्मण नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज, गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया, गीत कोई भी और गीत कोई भी नहीं वही लगाएंगे जो फरमाइश भेजी है हमें।
1: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए,

क्या बात है, खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं 102.7 एफएम रेनबो पेर अपने दोस्त मोहित रुबल के साथ। लो जी अगला मैसेज आया जी, साडे कोल पहुंचे है, लिखे है नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल और अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, लिखा है फिल्म गोरवल पार्ट वन, गीत क्यों आगे पीछे डोलते हैं बौरों की तरह। अरे बड़ा सा प्यारा सा गीत ढूंढ लिया आपने, हैं ढूंढूं अगर गाना मिल जाए। गोलमाल यहाँ पे, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल क्यों आगे पीछे, अरे मिल गया। और ये फरमाइश हमें भेजी है, अच्छा बोल दिया मैंने, जयराम खोरवाल, ओके धन्यवाद सर गीत प्ले करने के लिए, प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज, सत श्रीकाल सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो, यशमीत सोम्या अविरल सिंह, कोई भी सुना दो, ठीक है जी धन्यवाद। अगला मैसेज जी, फिल्म दो रास्ते गीत के बोल ये रहे, और फरमाइश करता है जाकिर मुलानी, सुमैया सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा, चाची और पूरा मुलानी परिवार, ठीक है जी। हमारे महाराष्ट्र में 4 दिनों से लगातार भारी वर्षा हो रही है सर जी, अरे प्लीज अपना ध्यान रखिए, मैंने खबरों में भी देखा था। देखा जी सर जी, प्रोग्राम लाजवाब पेश कर, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म शागिर्द आवाज लता मंगेशकर, दिलवर प्यार वर, मैं कह जानू रे, जानू तो जानू, बस इतना जानू तो मैं इतना मानू रे। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी, हमारे महाराष्ट्र में 4 दिनों से बारिश हो रही है, और लिखा है अगर मुमकिन हो तो हमारा गीत चलाना जी, बहुत बाकायदा लाइव सुन रहे हैं, अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज, फिल्म त्रिशूल गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज है, भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें। अरे हो गया, आदरणीय उद्घोषक जी, प्यार भर नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, कार्यक्रम आपकी पसंद, फिल्म आना मिलो, अरे पूरा कार्यक्रम का नाम आपकी पसंद नहीं है, दिल चाहता है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे कोई भी मैसेज आप आकाशवाणी के किसी और प्रोग्राम का कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते, आपको बकायदा लिखना पड़ेगा कि मैसेज जो है जलंधर एफएम रेनबो मोहित रुबल को ये जा रहा है।

तब हम आपकी फरमाइश लेंगे, सिर्फ नाम लेंगे, पढ़ोगे। सफीदो सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुछ खुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार। ठीक है, ये थोड़ी सी आदत चेंज करनी पड़ेगी। अगला मैसेज, आकाशवाणी दिल चाहता है प्रोग्राम पेश करने वाले आरजे को नमस्कार। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब चल रहा है। हम आपके कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रहे हैं जी। हमारी फरमाइश को जरूर जरूर शामिल करें, आपकी अति महान कृपया होगी। लिखने में कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं। गीत भी सुनवा दीजिए, धन्यवाद। गगनोला धाता गंज जिला बदाऊ से, इसरत खान, शायरा बेगम और रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान, एरहान खान। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज आया है हमारे पास, लिखा है प्रेम पूर्वक नमस्कार ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित व्याल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, समस्त राजे यादव देशमुख और यार वायार परिवार किसी भी गीत के साथ हमें शामिल जरूर करें, धन्यवाद। अगला मैसेज आया है हमारे पास, एनी सॉन्ग, लिखा है पहाड़ गज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। लो जी, सुनने जा रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत गीत।

जी नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अपने थे, अपने ही हमें प्रोग्राम में मैसेज भेजते हैं और अपने जो है वो नाराज भी नहीं होते। ठीक है जी, अगला मैसेज है जी। मोहित साहब, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय फेवरेट सॉन्ग जसवीर सिंह दोरा। थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज है, प्रिय प्रसारक जी प्यार भरे नमस्कार। गांव कृष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागो ने और योगिता हागो ने और कुमारी प्याली हागो ने, पार्थ हागो ने परिवार, थैंक यू सो मच जी पूरे परिवार को। अगला मैसेज है, आपको हमारा नमस्कार। दिल चाहता है कार्यक्रम फिल्म लोफर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। बोरखेला पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुन्नत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुन्नत, चेतन नाहटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चुटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल मैं सायर बदनाम, फिल्म नमक हराम। अगला मैसेज है, नरेश कुमार पोल त्रिपुरा पोल परिवार, विलय संगवा जिंदर फिल्म अक्सर द गीत झलक दिखला जा रे। ओके जी, अगला मैसेज है हमारे पास, नमस्ते फिल्म हिफाजत गीत मोहब्बत तो करते हैं सारा, और बधेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव।

अगला मैसी प्रोग्राम दिल जाता है पेशकर्ता को प्यार भरे नमस्कार और फिल्म दोस्ती और गीत के बोल चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी पिंड चंजेड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार नूं प्यार सत श्रीकाल सन तुसीं किसी भी गीत शामिल करो अगला मैसेज जी हमारे यहाँ तो कल राज बादल दिख रहे हैं लेकिन बरसे नहीं जी सर जी हमारा नाम भी प्रोग्राम में शामिल करे 37 मिनट से इंतज़ार में हूँ अरे दोस्त आप क्या आपको क्या बताऊँ कि कितने मैसेजेस आज फिर से हमारे पास पहुँचे हैं और फिर भी आपका नाम ज़रूर लेंगे किसी का भी नाम बिना लिए प्रोग्राम वाइंड अप नहीं करते हम प्रोग्राम दिल जाता है प्यार भरी नमस्कार और मूवी आबरू गीत जिन्हें हम भूलना चाहें और ये मैसेज भेजा है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता और लिखा है एनी सॉन्ग में हमें शामिल करें खुश रहो आबाद रहो ठीक है जी और लिखा है अच्छा मैसेज फरमाइश दोबारा भेज दिए इन्होंने अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है नमस्कार जी गीत अब के सावन में गिरे रमजिम और ये फरमाइश भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक ठीक है जी और ये लास्ट मैसेज हमें भेजा है किसी ने हाथ जोड़कर और सोचा होगा कि भाई साहब ने सारे ही मैसेज जो हैं वो ले ली ठीक है जी थैंक यू सो मच जी और अब इस प्रोग्राम के आखिरी गीत फिल्म लुटेरा का ये गीत एंजॉय करेंगे हम सभी और थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर ब्यूटीफुल मैसेजेस थैंक यू सो मच टेक केयर गुड नाइट एंड अगला प्रोग्राम भी है सो कीप लिसनिंग

कि कोई पूछेगा जिस दिन वाकई कि ये जिंदगी क्या है, कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर हम उड़ा देंगे। क्या बात है, बहुत ही डी, बहुत ही रियल शायरी जो कि है अनवर जलालपुरी साहब जी। एफएम रेनबो ते तुसी इस वक्त एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम शामे गजल।

रिज्क जैसा है मुकद्दर में लिखा होता है, रिज्क जैसा है मुकद्दर में लिखा होता है, फन किसी शख्स की जागीर नहीं हो सकता। के अजीब होती है आदाबे रुखसते महफिल, अजीब होती है आदाबे रुखसते महफिल की वो भी उठ के गया जिसका घर ना था कोई। एफएम रेनबो ते तुसी इंजॉय कर रहे प्रोग्राम शामे गजल।

पराया कौन है और कौन अपना सब भुला देंगे। पराया कौन है और कौन अपना सब भुला देंगे, मताए जिंदगानी एक दिन हम भी लुटा देंगे। तुम अपने सामने की भीड़ से होकर गुजर जाओ, तुम अपने सामने की भीड़ से होकर गुजर जाओ कि आगे आने वाले तो हरगिज ना तुमको रास्ता देंगे। जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो, ये झोंके एक पल में सब चिरागों को बुझा देंगे। कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर हम उड़ा देंगे। दोस्तों प्रोग्राम तुसी इंजॉय किया मेरे नाल। प्रोग्राम का नाम शामे गज़ल, तो बहुत खूबसूरत गज़ल असी प्रोग्राम दे विच सुनिया, तो है जो हुणे गज़ल मैं पढ़ने की कोशिश की है, जिमें कि पहला कि मैं शायरी पढ़ी सी अनवर जलालपुरी जी, सो उन्हां दी गज़ल पढ़ने की कोशिश की, उम्मीद है तुहानूं पसंद आई होगी। फिलहाल हुण असी इंजॉय करांगे प्रोग्राम की आखिरी गज़ल जसमीत कौर हुणां दी आवाज़ दे विच।

प्यारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो के प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल रात 10:41:31 हो चुके ने, हम इंजॉय करेंगे अगला गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज़ के कभी ना कभी कहीं।

ये तो सुन जाए कर सी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल रात दे 11 बज रहे ने, मैनू तुसी हुणे इत्थे दवो इजाज़त। थैंक यू। FM बैंड 102.67 MHz से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस उत्तर रात दे 11 बज चुके ने ते साडी अज दे सभा दे सारे ही प्रोग्राम हुण इत्थे खत्म हुंदे ने। सवेरे फिर मिलांगे 5:55 ते नवे दोस्त नवे प्रोग्राम दे नाल। तद तक लई सानू दवो इजाज़त। शब्बा खैर। जय हिंद।